ना को होए। जे वड आप ते वड तेरी दात, जिन दिन कर कै कीती रात। खसम विसारह ते कम जात, नानक नावै बाज सनात। राग गुजरी महला चौथा, हर के जन सत गुर सत पुरखा। बिनो करो गुर पास हम कीरे करम, सत गुर सरणाई कर दया नाम प्रगास। मेरे मीत गुरदेव मोको राम नाम प्रगास। गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई, हर कीरत हमरी रह रास। रहाओ हर जन के वड भाग वडेरे, जिन हर हर सरदा हर प्यास। हर हर नाम मिले त्रिपता सह, मिल संगत गुण प्रगास। जिन हर हर हर रस नाम ना पाया, ते भागहीन जम पास। जो सतगुर सरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास। धन धन सत संगत जित हर रस पाया, मिल जन नानक नाम परगास। राग गुजरी महला पंजवा, काहे रे मन चित वह उदम। जा आहर हर जियो परया, सैल पत्थर मह जंत उपाए। ताका रिजक आगे कर तरया, मेरे माधव जी सत संगत मिले सो तरया। गुर प्रसाद परम पद पाया, सूके काष्ट हरिया। रहाओ जनन पिता लोक सुत बनता, कोई न किस की तरिया। सिर सिर रिजिक संभाहे ठाकुर, काहे मान पाओ करिया। उडे ऊड आवे सै कोसा, तिस पछ है बचरे शरिया। तिन कवन खलावै कवन चुगावै, मन मह सिमरन करिया। सब निदान दस अष्ट सिदान, ठाकुर कर तल तरिया। जन नानक बल बल सद बल जाइय, तेरा अंत ना पारा वरिया। राग आशा महला चौथा, सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन, हर अगमा अगम अपार। सब त्यावह सब त्यावह तुद जी, हर सच्चे सिरजनहारा। सब जी तुम्हारे जी, तू जिया का दातारा। हर त्यावह

जंत विचारा। तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी, हर एको पुरख समान एक दाते एक पेखारी जी, सब तेरे चोज वेडाना। तू आपे दाता आपे भुगता जी, हों तुद बिन अवर न जाना। तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी, तेरे क्या गुण आख वखाना। जो सेवा है तुद जी, जन नानक तिन कुर्बाना। हर त्याव है तुद जी, से जान जुग मैं सुखवासी। से मुकत पहे जिन हर त्याया जी, तिन तूटी जम की फासी। जिन निरपौ जिन हर निरपौ त्याया जी, तिन का पौ सब गवासी। जिन सेवया मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी। से तन जिन हर त्याया जी, जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी, भरे बेअंत बेअंता। तेरे भगत सलाहन तुद जी, हर अनेक अनेक अनंता। तेरी अनेक कर है हर पूजा जी, तप तप है जप है बेअंता। तेरे अनेक पढ़े बहु सिमरत शास्त जी, कर किरिया खट कर्म करंता। से भगत भले जन नानक जी, जो भाव है मेरे हर भगवंता। तू आद पुरख अपरंपर करता जी, तुद जेवड अवर ना कोई। तू जुग जुग एको सदा सदा, तू एको जी तू निहचल करता सोई। तुद आपे भाव सोई वरता जी, तू आपे करहै सो होई। तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी, तुद आपे सिरज सब गोई। जन नानक गुण गावै करते के जी, जो सब सहका जानोई। आसा महला चौथा। तू करता सचियार मेंडा साई, जो तौ पावै सोई थीसी। जो तू देह सोई हो पाई, रहाओ सब तेरी। तू सबने त्याया, जिसनो कृपा करहै तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लादा मन मुख गवाया, तुद आप विछोड़या आप मिलाया। तू दरियाओ सब तुझ ही माहे, तुझ बिन दूजा कोई नाहे। जी जंत सब तेरा खेल, विजोग मिल विछुड़या संजोगी मेल। जिसनो तू जाना है, सोई जन जाने। हर गुण सद ही आख वखाने। जिन हर सेवया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा अवर ना कोए। तू कर कर वेखा है जान है सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला। तित सरवरड़ै पई ले निवासा, पानी पावक तिन है किया। पंकज मोह पग नहीं चालै, हम देखा तह डूबी अले। मन एक न चेतस मूड मना, हर बिसरत तेरे गुण गलिया। रहाओ ना हो जति सती नहीं पड़या,

ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जच्छन उपजायो। आद अंत एक है अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। सेवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पल मो बद कियो। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पशानत। चीटी ते कुंचर अस थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछानै, घट घट के पट पट की जानै। जब उदकारख करा करतारा, प्रजा धरत तब देहे अपारा। जब अकारख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह धार सब हूँ। जेते बदन श्रेष्ठ सब तारै, आप आपनी बूझ उचारै। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत बेद भेद अर आलम। निरंकार निर्बकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभ। ताका मूड उचारत भेदा, जाको भेव ना पावत बेदा। ताकौ कर पाहन अनुमानत, महामूड कश भेद न जानत। महादेव कौ कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पेव। आप आपुनी बुध है जेती, बरनत पिन पिन तो है तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, केह बिद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप सरूपा, रंक पयो राव कही पूपा। अंडज जेरज से तज कीनी, उत पूज खान बहुर राच दीनी। कहूं फूल राजा हवे बैठा, कहूं सिमट पयो संकर इकैठा। सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव, आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रण कहता। जे अस तुझ तव सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखित हवा मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार ते है, ताके काल निकट नह है। रक्षा होए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे नहर हो, ताके पाप तनक मह हरे हो। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शाह श्वय सके ना कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फास

सहाई दुष्ट दोखते ले हो बचाई। सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आने ओ। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मात एक ना माने ओ। सिम

पार पाहे। जिन कौ लगी प्यास अमृत से खाहे, कल मैं एहो पुन गुण गोविंद गाहे। सब सैनो किरपाल संभाले साहे साहे, बिरथा कोई ना जाए जे आवै तो दयाहे। सलोक महला पंजवा। अंतर गुर आराधना जिहवा जप गुर नाओ, नेत्रे सत गुर पेखना श्रवणे सुनना गुर नाओ। सत गुर से तीरतेया दरगह पाई ठाओ, कहो नानक किरपा करे जिसनो ए वाथ दे। जग मह उत्तम काडी यह विरले के महला पंजवां।

0: तिस साहिब की टेक नानक मन माहे जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। तू ठाकुर तुम पहर दास जियो पिंड सब तेरी
1: तुम अद पिता हम बारक तेरे तुरी कृपा कोई न जाने तुम पूजे भगवंत सगल समगिरी तुम सुतर तारी तुम ते हो सो आगे का

सत्संग जी, बोलो जी। वाहेगुरु वाहेगुरु, एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वास भगवती पाचे दसवीं प्रथम भगवती सिमर कह गुरु नानक लई त्या है। फिर अंकट गुरते अमरदास रामदास सहाय अर्जुन हर गोबिंद सिमर श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याटे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमर है कारण उन्हें ध्यावता है। सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, सब थाई हुए सहाय दसा पातशाह के पुत्र आत्मक स्वरूप साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब ने पहाड़दार दाते अंतर के खालसा से बोलो जी। वाहे गुरु गरीब नवाज आप जी दे पंच प्यारी चार साहबजादे चाली मुक्त हटियां जपियां तपियां जिन्हें नाम जपया वन छकिया दे चलाई ते वाहे देख के डिट किया तेना प्यार सत्यारियां की कमाई दते अंतर के बोलो जी। वाहे गुरु जन्ना सिंघा सिंघणिया धर्म हे सी दिते बंद बंद कटवाए खोपरियां लुआईया चरखड़िया ते चले आर नजराए गए गुरुद्वारे सेवा ते कुर्बानियां कीतियां तर नहीं आ रहा सी किसे ते कैसा सस्ता संगत पाया तिना की कमाई दते अंतर के बोलो जी। वाहे गुरु पंजा तख्तां सवल गुरुद्वार हुंदा ते अंतर के बोलो जी। वाहे गुरु प्रथम है सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे नाम चेता वै चित आवन का सदका सर्व सुखो वै जहां जहां गुरु खालसा साहब रचे रिहायत देवते की फतेह ब्रिद की पहज पंथ की जीत श्री साहब जी सहाय खालसा जी के बोलबाले बोलो जी। वाहे गुरु सिखां नूं सिखी दान के दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहब दर्शन इशनान चौंकियां चंडे बुंगे जुग जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी। वाहे गुरु सिखां दा मन नीवा मत उचे मत पद के राखे आप वाहे गुरु गुरु की प्रवाह पंथ सदा सहाय दता जियो गुरुद्वारा ननकाणा साहेब पंजा साहेब थोर गुरुद्वारे गुरधाम जिन्हों तो आप जो पंथ नूं विछोड़िया गया है उन्होंने खुले दर्शन दीदार सेवा समाज का दान अपनी खालसा जी नूं बख्शो। हे नोटियां दी ओट गुरु न्यासरियां दे आसरे गुरु धन धन गुरु ग्रंथ उतार पिता जी हो आप दे चरण कमला अरदास मिंतारी आप बख्शिश कीती है आप दे अना पितर गुरबाणी सुखमनी साहिब संपूर्ण पाठ दीदार उपरंत संध्या समा जान के आप दे चरण सोधदार रहरास पाठ की तेरी कृपा करो होइयां भुलां चुकां दी माफी बख्शो पढ़ी हुई बाणी सोध के सचखंड प्रवान करो बाणी दा भाव सारिया संगतां दी हिरदे पसंद कृपा करो जी। अगो तो शुद्ध पित्र बाणी टालनी बड़ बुद्धि बख्शिश करो गरीब नवाज इस खुशी विच आप जी दी बख्शियां दातां विचों पितर कड़ाब सियाजी देगा तैयार कर खास दतार आप जी भोग लो सीत प्रसाद सा संगत दी रसना लायक होवे जो जी सके श्वास श्वास आप जी दा पितर नाम जप बख्शिश करो दतार जी दुखां कलेशां रोगां दा नाश करो सुखां दा प्रकाश करो देश प्रदेश रखा बख्शे करो जी कृपा करो गरीब नवाज ये दतार जी हो आप जी बख्शियां दातां जो लंगर तुर सवार प्रवान करनी गरीब नवाज आप दे चरणा सेवा कर रहे सारे टैलिए संघा सिंघणियां नूं तंदुरुस्ती बख्शो चाटीगर बख्शो अते सदा ही इस तरह अपने चरणा सेवा दी भावना मखरी पालता करो गरीब नवाज जी कृपा करो दतार अमृत वेले तो लैके दर ते आई सब संगतां दी हाजरी दर प्रवान करो घड़ियां लिखे लाओ संगतां दा दर ते तिर फुर भेटा प्रवान शुभकामना पूर्ण करो जी कृपा करो गरीब नवाज खास संबंध सिख कौम नूं एकता सुभाग प्यार दी बख्शिश करके सत लोई दाल बख्शो चाना ना जोड़ो गुरबाणी का प्यार बख्शो हर मैदान जवान फतेह बख्श कर इबादत करो जी गरीब नवाज कृपा करो दतार दूर दराज कराने बैठिया लाइव खत्म की श्रवण करियां सारी संगत हाजरी प्रवान करो घड़ियां लिखे लाओ आपने बख्शे की संगत नूं तो बख्शे संगत आदि चरणा धन्यवाद करते हैं शुक्रिया अदा करते हैं बेहद माया ऑनलाइन गुरु घर गुरु घर सेवा संगतार संगता माया बेटा कर चरण प्रवान करो बख्शा साहब ने कमाइया सफल करो कार्य वार सब संगत शुभकामना संबंध पूरिया करो जी दतार मेहरबान कराओ गरीब नवाज सेवा प्रवान करो भुला चुका माही बख्शो गरीब नवाज बेअंत पुराणा वालों बेअंत माया बेअंत रसधाम आप दे लंगर देखा सुने मंदिरों वास्ते हाजरियां प्रवान करो कृपा करो सब कमाइया सफल करो काजे बख्शो दिता सब संगत परिवार सुख रखो सब दुभकामना पूरी करो घर वजवाज बख्शा की कृपा करो जी दतार मेहर करो सेवा प्रवान करो पुल माही बख्शो पवित्र नामे बख्श कर ब्रंथ अज के शाम की कथा की दबा रमता वास्ते आग्या बख्शो रेंदे कार सवार के चरण तुना दि बनाओ शुद्ध के पितर सेवालियां की बात दतार सही प्यारे मेरे जिले बनाव का नाम जता नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणी।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਾਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਵੀ ਚਲਾਯੋ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ। ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮਹਿਲ

नानक जिस बिन घड़ी न जीवना, विसरे सरे न बिंद, तिस स्यों क्यों मन रूसी है, जिस है हमारी चिंद। महला पंजवा। रत्ते रंग पार ब्रह्म कै, मन तन अत गुलाल, नानक विण नावै आलू दया, जिती होर ख्याल। पवड़ी

गुर पौ जल पार लंघाया, जित्ता पावाड़ा। गुरमती सब रस भोगदा, वड्डा आखाड़ा। सब इंद्रियां वस कर दित्ते यो, सतवंता साड़ा। जित लायन तित लग दिया, नह खिंचो ताड़ा। जित लायन तितै लग दिया, नह खिंचो ताड़ा। जो इच्छी सो फल पाएदा,

एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए, फिर अंगद गुर ते अमरदास। रामदास हुई सहाय, अर्जुन हर गोबिंद नो सिमरौ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई है, जिस रिठे सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरै। घर नौ निध आवै धाए, सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह। गुरु गोबिंद सिंह साहेब जी महाराज, सब थाई हुए सहाय, सब थाई हुए सहाय। दसां पातशाहियां दी आत्मक जोत, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ। दर्शन दीदार दा ध्यान करके बोलो जी। पंजां प्यारियां चौहां साहिब जादियां, चालियां मुक्तियां हठियां, जपियां तपियां, जिन्हां आप जी दा नाम जपिया वंड छकिया, देख चलाई ते गवाही देख के अनुडिट कीता, तिन्हां प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान करके बोलो जी। जिन्हां सिंह सिंगणियां धर्म हेत सीस दिते, बंद बंद कटवाए, खोपरियां उतरवाईयां तां न्यारियां नाल चिरवाए, सिखी किस्सा सुवासा संग निभाही, इन्हां समूह सिंह सिंगणियां पुचंगियां, सिद्धकवाना दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धरके बोलो जी। प्रथमें सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु, वाहिगुरु, वाहिगुरु नाम चित्यावे, चित्यावन का सदका सर्व सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहेब, तहां तहां रक्षा रियायत, देख तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत, श्री साहेब जी सहाय। खालसा जी के बोलबाले बोलो जी। सिखां नूं सिखी दान, केस दान, रहत दान, बबेक दान, विसा दान, भरोसा दान, दाना सिरदान, नाम दान, श्री अमृतसर जी के दर्शन इशनान, चौकियां झंडे बुंगे जुगो जोगे अटल, धर्म का जयकार। खालसा जी बोलो जी। सिखां दा मन नीवा, मत उची, मत पत दे राखे आप वाहिगुरु। हे गरीब नवाज, अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जियो। श्री ननकाणा साहिब अते होर गुरुद्वारे गुरधाम, जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है, खुले दर्शन दीदार अते सेवा संभाल दा दान अपने प्यारे खालसा जी नूं बख्शो जी। हे निमाणियां दे माण, निताणियां दे तान, तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, आप जी दी पवित्र हजूरी विखे संध्या वेले दे दीवान सजाउणा कीते ने। सजे दीवाना विच अमृतमयी बाणी दे कीर्तन अते कथा विचार कीती है सतगुरु। होईयां भुल्लां बख्श देणियां जी, पढ़ी सुनी बाणी दा भाव समूह संगतां दे हिरदियां विच वसाउणा, संगतां दीआं हाजरियां लेखे लाउणियां, पेटावां दर ते प्रवान करनियां, सरबत नूं अपणे दरों करों नाम दीआं दातां, सिखी सिदक भरोसा बख्शिश करना सतगुरु। सभना दे घरां विच सुख शांति बनाई रखनी, इतफाक बख्शिश करना, अपने पंथ नूं चढ़दी कला विच रखना सचे पातशाह जीओ। खालसा पंथ विच एकता इतफाक बख्शिश करना, गरीब नवाज कृपा करो, पवित्र हुक्मनामे बख्श के दीवाना दी समाप्ति दी आग्या बख्शो। सही प्यारे मिलो, जिना मिलिया तेरा नाम चित्त आवे, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आग्या पई अकाल की, तबै चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो,

एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जुन हर गोबिंद नौ सिमरौ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आई है जिस रिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमर कार नौ निध आवै ताए सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह गुरु गोविंद सिंह साहिब जी महाराज सब थाई होए सहाय सब थाई होए सहाय। दसां पातशाहियां दी आत्मक जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान करके बोलो जी। हे गरीब नवाज धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सचे पातशाह जीओ आप जी ने अपार बख्शिश रहमत कीती है जी। अमृत वेले तो लै करके इस वेले तक आप जी ने अपने सिंघासन ते प्रकाशमान हो करके संगतां नूं दर्शन दे दारे बख्शिश कीते। सतगुरु आप जी दा कोटि कोटान शुकराना है जी। इस वेले दीवाना दी समाप्ति हुई है आप जी दे सुख आसन दी सेवा सोहिला साहिब जी दे पाठ कीते ने आप जी दे दर घर दे टहलियां पासों सेवावां निभाउंदियां होईयां भुल्लां बख्श देणियां जी। आप जी कृपा करो अपने सुखासन स्थाना विखे चल के विराजमान होवो संगतां नूं खुशियां बख्शो रात सुख शांति नाल बतीत होवे अमृत वेले फिर संगतां नूं दर्शन दारे बख्शिश करने जी। से प्यारे मिलने जिन्हां मिलिया तेरा नाम चिते आवे नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

ताकत हर दरगह ढोई न पाई। इस हर धन का साहो हर आप है संतो, जिसनु दे सो हर धन लद चलाई। इस

ਤਨ ਭਾਗ ਮਿਲਖਤ ਨਾ ਰਾਖ ਪੁਰੋਏ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਮਨਾ ਜਿਨ ਤੇਰੀ ਮਨ ਬਨਤ ਬਨਾਈ ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸਦ ਤਿਸਹਿ ਧਿਆਈ ਤਿਸਹਿ ਧਿਆਏ ਜੋ ਏਕ ਅਲਖ ਹੈ ਇਹਾ ਊਹਾ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਰਖੈ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰਹਿ ਪੁਨ ਬਹੁਦਾਨ ਮਨ ਆਠ ਪਹਿਰ ਕਰ ਤਿਸਕਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਆਚਾਰ ਬਿਓਹਾਰੀ ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਾ ਸਾ ਚਿਤਾਰੀ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰ ਹੋ ਸਦਾ ਅਨੂਪ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੀ ਨੀਤੀ ਜਾਤ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੀ ਪਤ ਰਹਿ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਜਸ ਕਾ ਹੈ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਨਹਿ ਕਰਨ ਨਾਦ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੇਖ ਹੈ ਬਿਸਮਾਤ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬੋਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਨਾ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ ਬਸਨਾ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਸਤ ਕਰ ਚੱਲਾ ਹੈ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਪੂਰਨ ਫਲ ਹੈ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮਗਤ ਪਾਵ ਹੈ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵ ਹੈ ਐਸਾ ਪ੍ਰਭ ਤਿਆਗ ਅਵਰ ਕਤ ਲਾਗਹੁ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਮਨ ਜਾਗਹੁ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਸੰਸਾਰ ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਕਹੁ ਮੂਲ ਨਾ ਮਨਹੋ ਵਿਸਾਰ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਰੇ ਮਨ ਮੂੜ ਤੂੰ ਤਾਕਉ ਜਾਪ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਤਿਸ ਹੈ ਜਾਨ ਮਨ ਸਦਾ ਹਜੂਰੇ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਪਾਵਹਿ ਸਾਚ ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਤਾਸਿਉ ਰਾਚ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਕੀ ਗਤ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਜਾਪ ਜਪੈ ਜਪ ਸੋਏ ਆਪ ਜਪਾਏ ਜਪੈ ਸੋ ਨਾਉ ਆਪ ਗਾਵਾਏ ਸੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਇਆ ਤੇ ਕਮਲ ਬਿਗਾਸ ਪ੍ਰਭ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਬਸੈ ਮਨ ਸੋਏ ਪ੍ਰਭ ਦਇਆ ਤੇ ਮਤ ਉਤਮ ਹੋਏ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ ਆਪਹੁ ਕਛੂ ਨ ਕਿਨਹੁ ਲਇਆ ਜਿਤ ਜਿਤ ਲਾਵ ਹੋ ਤਿਤ ਲਗਹੇ ਹਰ ਨਾਥ ਨਾਨਕ ਇਨ ਕੈ ਕਛੂ ਨ ਹਾਥ ਸਲੋਕ ਅਗਮ ਅਗਾਧ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੋਏ ਜੋ ਜੋ ਕਹੇ ਸੋ ਮੁਕਤਾ ਹੋਏ ਸੁਨ ਮੀਤਾ ਨਾਨਕ ਬਿਨਵੰਤਾ ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਅਚਰਜ ਕਥਾ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਤ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਲ ਸਗਲੀ ਖੋਤ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਮਿਟੈ ਅਭਿਮਾਨ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਪ੍ਰਗਟੈ ਸੁਗਿਆਨ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਬੁਝੈ ਪ੍ਰਭ ਨੇਰਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਭ ਹੋਤ ਨਬੇਰਾ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਪਾਏ ਨਾਮ ਰਤਨ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਏਕ ਉਪਰ ਜਤਨ ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਬਰਨੈ ਕੌਣ ਪ੍ਰਾਨੀ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਪ੍ਰਭ ਮਾਹੇ ਸਮਾਨੀ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਅਗੋਚਰ ਮਿਲੈ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਸਦਾ ਪਰਫੁੱਲੈ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਆਵਹਿ ਬਸ ਪੰਚਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੁੰਚਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹੋਏ ਸਭ ਕੀ ਰੇਨ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਮਨੋਹਰ ਬੈਨ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨ ਕਤਹੁ ਧਾਵੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਅਸਥਿਤ ਮਨ ਪਾਵੈ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਮਾਇਆ ਤੇ ਭਿੰਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਭ ਮੀਤ ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਮਹਾਪੁਨੀਤ ਸਾਧ ਸੰਗ ਕਿਸਿਓ ਨਹੀਂ ਬੈਰ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਾ ਬੀਗਾ ਪੈਰ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਾਹੀ ਕੋ ਮੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਾਣੈ ਪਰਮਾਨੰਦਾ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਾਹੀ ਹੋ ਤਾਪ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਤਜੈ ਸਭ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸਾਧ ਬਡਾਈ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭੂ ਬਨਿਆਈ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨ ਕਬਹੁ ਧਾਵੈ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਸ ਅਗੋਚਰ ਲਹੈ ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਅਜਰ ਸਹੈ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਬਸੈ ਥਾਨ ਉੱਚੈ ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਮਹਿਲ ਪਹੁੰਚੈ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਦ੍ਰਿੜੈ ਸਭ ਧਰਮ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਕੇਵਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਪਾਏ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਨਾਨਕ ਸਾਧੂ ਕੈ ਕੁਰਬਾਨ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਸਭ ਕੁਲ ਉਧਾਰੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਾਜਨ ਮੀਤ ਕੁਟੰਬ ਨਿਸਤਾਰੈ ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਸੋ ਧਨ ਪਾਵੈ ਜਿਸ ਧਨ ਤੇ ਸਭ ਕੋ ਵਰਸਾਵੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਧਰਮ ਰਾਏ ਕਰੇ ਸੇਵਾ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਸੋਭਾ ਸੁਰ ਦੇਵਾ ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਪਾਪ ਪਲਾਇਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਸਰਬ ਥਾਨ ਗਮ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਸਫਲ ਜਨਮ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਛੁ ਕਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਪੇਟਤ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਕਲੂਕਤ ਹਰੈ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਰਕ ਪਰ ਹਰੈ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਇਹਾਂ ਊਹਾਂ ਸੁਹੇਲਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਿਸ਼ੁਰਤ ਹਰ ਮੇਲਾ ਜੋ ਇੱਛਾ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਵੈ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਵੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਧ ਰਿਦ ਬਸੈ ਨਾਨਕ ਉਦਰੈ ਸਾਧ ਸੁਨ ਰਸੈ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਸੁਨੋ ਹਰ ਨਾਉ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਉ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਾ ਮੰਤੇ ਬਿਸਰੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਰਪਰ ਨਿਸਤਰੈ
साध कै संग लगे प्रभ मीठा, साधु कै संग घट घट डीठा, साध संग पै आज्ञाकारी, साध संग गत पई हमारी, साध कै संग मिटे सब रोग, नानक साध पेटे संजोग, साध की महिमा बेद ना जाना है, जेता सुन है तेता बखियाना है, साध की उपमा तेहो गुण ते दूर, साध की उपमा रही भार पूर, साध की शोभा का नाही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत, साध की शोभा ऊच ते ऊची, साध की शोभा मूच ते मूची, साध की शोभा साध बने आई, नानक साध प्राभ भेद ना पाई सलोक, मन साचा मुख साचा सोए, अवर ना पेखाए एक सबिन कोए, नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए, अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल मह कमल अलेप, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख, जैसे सूर सर्व कौ शोक, ब्रह्म ज्ञानी कै दृष्ट समान, जैसे राज रंक कौ लागे तुल पवान, ब्रह्म ज्ञानी कै धीरज एक, ज्यों बसुधा को खोदै को चंदन लेप, ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाओ, नानक ज्यों पावक का सह स्वभाव, ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला, जैसे मैल न लागे जला, ब्रह्म ज्ञानी कै मान होय प्रकाश, जैसे तर ऊपर आकाश, ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र सतर समान, ब्रह्म ज्ञानी कै नाही अभिमान, ब्रह्म ज्ञानी ऊच ते ऊचा, मन अपने है सब ते नीचा, ब्रह्म ज्ञानी से जन पहे, नानक जिन प्रभ आप करे, ब्रह्म ज्ञानी सगल कीरीना, आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना, ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया, ब्रह्म ज्ञानी ते काश बुरा न पहया, ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत वर्षी, ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता, ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान, ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी का गरीबी समाहा, ब्रह्म ज्ञानी पार उपकार उमाहा, ब्रह्म ज्ञानी कै नाही धंधा, ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंधा, ब्रह्म ज्ञानी कै होय सो भला, ब्रह्म ज्ञानी सो फल फला, ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार, ब्रह्म ज्ञानी कै एकै रंग, ब्रह्म ज्ञानी कै बसै प्रभ संग, ब्रह्म ज्ञानी कै नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी कै नाम प्रवार, ब्रह्म ज्ञानी सदा साध जागत, ब्रह्म ज्ञानी अहंग बोध त्यागत, ब्रह्म ज्ञानी कै मान परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कै घर सदा आनंद, ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता, ब्रह्म ज्ञानी कै होय अचिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत, ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ आप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी का दर्स बड़ भागी पाई आए, ब्रह्म ज्ञानी कौ बल बल जाई आए, ब्रह्म ज्ञानी कौ खोजे महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाहे, ब्रह्म ज्ञानी कै सगल मन माहे, ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी कौ सदा आदेश, ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाए अध्याखर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर, ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने, ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार, ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का करता, ब्रह्म ज्ञानी साध जीवै नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी सलोक, उर तारै जो अंतर नाम, सर्व मैं पेखै भगवान, निमख निमख ठाकुर नमस्कार, नानक ओह अपरस सगल निसतारै, अष्टपदी मिथ्या नाही रसना पारस, मन मह प्रीत निरंजन दरस, परत्रय रूप ना पेख नेत्र, साध की टहल संत संग हेत, करन ना सुने काहू की निंदा, सब ते जाने आपस को मंदा, गुर प्रसाद बिख्या पर हरे, मन की बाशना मन ते टरै, इंद्री जित पांच दोख ते रहत, नानक कोट मध्ये को ऐसा आपरस, वैष्णो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न, बिसन की माया ते होए भिन्न, कर्म करत हो वै नेह कर्म, तिस वैष्णो का निर्मल धर्म, काहू फल की इच्छा ने बचे, केवल भगत कीर्तन संग रचे, मान तन अंतर सिमरन गोपाल, सब ऊपर होवत कृपाल,
ਆਪ ਦ੍ਰਿੜੈ ਅਵਰਹ ਨਾਮ ਜਿ ਪਾਵੈ ਨਾਨਕ ਓ ਵੈਸ਼ਨੋ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਵੈ ਭਗਵਤੀ ਭਗਵੰਤ ਭਗਤ ਕਾ ਰੰਗ ਸਗਲ ਤਿਆਗੈ ਦੁਸ਼ਟ ਕਾ ਸੰਗ ਮਨ ਤੇ ਬਿਨਸੈ ਸਗਲਾ ਭਰਮ ਕਰ ਪੂਜੈ ਸਗਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਪਾ ਮਲ ਖੋਵੈ ਤਿਸ ਭਗਵਤੀ ਕੀ ਮਤ ਉਤਮ ਹੋਵੈ ਭਗਵੰਤ ਕੀ ਟਹਿਲ ਕਰੈ ਨਿਤਨੀਤ ਮਨ ਤਨ ਅਰਪੈ ਬਿਸਨ ਪ੍ਰੀਤ ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਬਸਾਵੈ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਭਗਵਤੀ ਭਗਵੰਤ ਕਉ ਪਾਵੈ ਸੋ ਪੰਡਿਤ ਜੋ ਮਨ ਪ੍ਰਬੋਧੈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਆਤਮ ਮੈਂ ਸੋਧੈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਾਰ ਰਸ ਪੀਵੈ ਉਸ ਪੰਡਿਤ ਕੈ ਉਪਦੇਸ ਜਗ ਜੀਵੈ ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ ਹਿਰਦੈ ਬਸਾਵੈ ਸੋ ਪੰਡਿਤ ਫਿਰ ਜੋ ਨ ਆਵੈ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ ਸਿਮਰਤ ਬੂਜੈ ਮੂਲ ਸੁਖਮ ਮੈਂ ਜਾਣੈ ਅਸਥੂਲ ਚਹੁਵਰ ਨਾ ਕੋ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਨਕ ਉਸ ਪੰਡਿਤ ਕੋ ਸਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਸਰਬ ਕੋ ਗਿਆਨ ਚਹੁਵਰ ਨਾ ਮੈਂ ਜਪੈ ਕੋ ਨਾਮ ਜੋ ਜੋ ਜਪੈ ਤਿਸ ਕੀ ਗਤ ਹੋਏ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਵੈ ਜਨ ਕੋਏ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਅੰਤਰ ਉਰ ਤਾਰੈ ਪਾਸ ਪ੍ਰੇਤ ਮੁਗਦ ਪਾਥਰ ਕੋ ਤਾਰੈ ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ ਕਲਿਆਣ ਰੂਪ ਮੰਗਲ ਗੁਣ ਗਾਮ ਕਾਹੂ ਜੁਗਤ ਕਿਤੈ ਨ ਪਾਈਐ ਧਰਮ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਮਿਲੈ ਜਿਸ ਲਿਖਿਆ ਧੁਰ ਕਰਮ ਜਿਸ ਕੈ ਮਨ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਨਿਵਾਸ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਮ ਸਤਿ ਰਾਮਦਾਸ ਆਤਮ ਰਾਮ ਤਿਸ ਨਦਰੀ ਆਇਆ ਦਾਸ ਦਸੰਤਨ ਭਾਏ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਸਦਾ ਨਿਕਟ ਨਿਕਟ ਹਰ ਜਾਨ ਸੋ ਦਾਸ ਦਰਗਹਿ ਪਰਵਾਨ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕਉ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ ਤਿਸ ਦਾਸ ਕਉ ਸਭ ਸੋ ਜੀ ਪਰੈ ਸਗਲ ਸੰਗ ਆਤਮ ਉਦਾਸ ਐਸੀ ਜੁਗਤ ਨਾਨਕ ਰਾਮਦਾਸ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਆਤਮ ਹਿਤਾਵੈ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋ ਕਹਾਵੈ ਤੈਸਾ ਹਰਕ ਤੈਸਾ ਉਸ ਸੋਗ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਤਹਿ ਨਹੀਂ ਬਿਯੋਗ ਤੈਸਾ ਸੁਵਰਨ ਤੈਸੀ ਉਸ ਮਾਟੀ ਤੈਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੈਸੀ ਬੇਖੁ ਖਾਟੀ ਤੈਸਾ ਮਾਨ ਤੈਸਾ ਅਭਿਮਾਨ ਤੈਸਾ ਰੰਕ ਤੈਸਾ ਰਾਜਾਨ ਜੋ ਵਰਤਾਏ ਸਾਈ ਜੁਗਤ ਨਾਨਕ ਉਹ ਪੁਰਖ ਕਹੀਐ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਸਗਲੇ ਠਾਉ ਜਿਤ ਜਿਤ ਘਰ ਰਾਖੈ ਤੈਸਾ ਤਿਨ ਨਾਉ ਆਪੇ ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਜੋਗ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਫੁਨ ਹੋਗ ਪਸਰਿਉ ਆਪ ਹੋਏ ਅਨਤ ਤਰੰਗ ਲਖੇ ਨ ਜਾਹੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਰੰਗ ਜੈਸੀ ਮਤ ਦੇ ਤੈਸਾ ਪ੍ਰਗਾਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰਤਾ ਅਬਿਨਾਸ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਇਆਲ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਨਾਨਕ ਪਏ ਨਿਹਾਲ ਸਲੋਕ ਉਸਤਤ ਕਰਹਿ ਅਨੇਕ ਜਨ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾ ਵਾਰ ਨਾਨਕ ਰਚਨਾ ਪ੍ਰਭ ਰਚੀ ਬਹੁਬਿਧ ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਕਈ ਕੋਟ ਹੋਏ ਪੂਜਾਰੀ ਕਈ ਕੋਟ ਆਚਾਰ ਵਿਵਹਾਰੀ ਕਈ ਕੋਟ ਭੈ ਤੀਰਥ ਵਾਸੀ ਕਈ ਕੋਟ ਬਨ ਭ੍ਰਮ ਹੈ ਉਦਾਸੀ ਕਈ ਕੋਟ ਵੇਦ ਕੇ ਸਰੋਤੇ ਕਈ ਕੋਟ ਤਪੀ ਸਰਹੋਤੇ ਕਈ ਕੋਟ ਆਤਮ ਧਿਆਨ ਧਾਰ ਹੈ ਕਈ ਕੋਟ ਕਬਕਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਈ ਕੋਟ ਨਵਤਨ ਨਾਮ ਧਿਆਵ ਹੈ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਵ ਹੈ ਕਈ ਕੋਟ ਭਏ ਅਭਿਮਾਨੀ ਕਈ ਕੋਟ ਅੰਧ ਅਗਿਆਨੀ ਕਈ ਕੋਟ ਕਿਰਪਨ ਕਠੋਰ ਕਈ ਕੋਟ ਅਭੇਗ ਆਤਮ ਨੇ ਕੋਰ ਕਈ ਕੋਟ ਪਰ ਦਰਬ ਕੋਹਿਰ ਹੈ ਕਈ ਕੋਟ ਪਰ ਦੁਖ ਨਾ ਕਰ ਹੈ ਕਈ ਕੋਟ ਮਾਇਆ ਸਰਮਾਹੇ ਕਈ ਕੋਟ ਪਰਦੇਸ ਪਰਮਾਹੇ ਜਿਤ ਜਿਤ ਲਾਵ ਹੋ ਤਿਤ ਤਿਤ ਲਗਨਾ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀ ਜਾਣੈ ਕਰਤਾ ਰਚਨਾ ਕਈ ਕੋਟ ਸਿਧ ਜਤੀ ਜੋਗੀ ਕਈ ਕੋਟ ਰਾਜੇ ਰਸ ਭੋਗੀ ਕਈ ਕੋਟ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਉਪਾਏ ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਥਰ ਬਿਰਖ ਨਿਪ ਜਾਏ ਕਈ ਕੋਟ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਕਈ ਕੋਟ ਦੇਸ ਭੂ ਮੰਡਲ ਕਈ ਕੋਟ ਸੱਸੀ ਅਰ ਸੂਰ ਨਖਿਅਤਰ ਕਈ ਕੋਟ ਦੇਵ ਦਾਨਵ ਇੰਦਰ ਸਿਰ ਸ਼ਤਰ ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਆਪਣੇ ਸੂਤ ਧਾਰੈ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਤਿਸ ਨੇ ਸੁਤਾਰੈ ਕਈ ਕੋਟ ਰਾਜਸ ਤਾਮਸ ਸਾਤਕ ਕਈ ਕੋਟ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਿਮਰਤ ਅਰ ਸਾਸਤ ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਏ ਰਤਨ ਸਮੁੰਦ ਕਈ ਕੋਟ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੰਤ ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਏ ਚਿਰ ਜੀਵੇ ਕਈ ਕੋਟ ਗਿਰੀ ਮੇਰ ਸਵਰਨ ਥੀਵੇ ਕਈ ਕੋਟ ਜਾਖਯ ਕਿੰਨਰ ਪਿਸਾਚ ਕਈ ਕੋਟ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸੂਕਰ ਮਿਰਗਾਚ ਸਭ ਤੇ ਨਿਰੈ ਸਭ ਹੂੰ ਤੇ ਦੂਰ ਨਾਨਕ ਆਪ ਅਲਿਪਤ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਤਾਲ ਕੇ ਵਾਸੀ ਕਈ ਕੋਟ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਨਿਵਾਸੀ ਕਈ ਕੋਟ ਜਨਮ ਹੈ ਜੀਵ ਹੈ ਮਰ ਹੈ ਕਈ ਕੋਟ ਬਹਜੋ ਨੇ ਫਿਰ ਹੈ ਕਈ ਕੋਟ ਬੈਠਤ ਹੀ ਖਾਹੇ ਕਈ ਕੋਟ ਘਲ ਹੈ ਥੱਕ ਪਾਹੇ ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਏ ਤਨਵੰਤ ਕਈ ਕੋਟ ਮਾਇਆ ਮਹਿ ਚਿੰਤ
ਜਹ ਜਹ ਭਾਣਾ ਤਹਿ ਤਹਿ ਰਾਖੇ, ਨਾਨਕ ਸਭ ਕਿਛੁ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਹਾਥੇ। ਕਈ ਕੋਟ ਪਹਿ ਬੈਰਾਗੀ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਗ ਤਿਨ ਲਿਵ ਲਾਗੀ। ਕਈ ਕੋਟ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਖੋਜੰਤੇ, ਆਤਮ ਮੈਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲਹੰਤੇ। ਕਈ ਕੋਟ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਸ, ਤਿਨ ਕਉ ਮਿਲਿਓ ਪ੍ਰਭ ਅਬਿਨਾਸ਼। ਕਈ ਕੋਟ ਮੰਗਹ ਸਤ ਸੰਗ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਿਨ ਲਾਗਾ ਰੰਗ। ਜਿਨ ਕਉ ਹੋਏ ਆਪ ਸੁ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਾਨ ਸਦਾ ਤਹਨ ਤਹਨ। ਕਈ ਕੋਟ ਖਾਣੀ ਅਰਖੰਡ, ਕਈ ਕੋਟ ਆਕਾਸ ਬ੍ਰਹਮੰਡ। ਕਈ ਕੋਟ ਹੋਏ ਅਵਤਾਰ, ਕਈ ਜੁਗਤ ਕੀਨੋ ਵਿਸਥਾਰ। ਕਈ ਬਾਰ ਪਸਰਿਓ ਪਾਸਾਰ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਇਕ ਏਕ ਅੰਕਾਰ। ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਨੇ ਬਹੁ ਭਾਂਤ, ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਮਾਹੇ ਸਮਾਤ। ਤਾਕਾ ਅੰਤ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਏ, ਆਪੇ ਆਪ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ। ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਦਾਸ, ਤਿਨ ਹੋਵਤ ਆਤਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਕਈ ਕੋਟ ਤਤ ਕੇ ਬੇਤੇ, ਸਦਾ ਨਿਹਾਰ ਰਹਿ ਏਕੋ ਨੇਤਰੇ। ਕਈ ਕੋਟ ਨਾਮ ਰਸ ਪੀਵਾ ਹੈ, ਅਮਰ ਪੈ ਸਦ ਸਦ ਹੀ ਜੀਵਾ ਹੈ। ਕਈ ਕੋਟ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਹੈ, ਆਤਮ ਰਸ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜਨ ਕਉ ਸਾਸ ਸਾਸ ਸੁਮਾਰੇ, ਨਾਨਕ ਓਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੇ ਪਿਆਰੇ। ਸਲੋਕ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਹੈ, ਦੂਸਰ ਨਾਹੀ ਕੋਏ। ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲ ਹਾਰਨ, ਜਲ ਥਲ ਮਹੀ ਅਲ ਸੋਏ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨੈ ਜੋਗ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਹੋਗ। ਖਿਨ ਮਹਿ ਥਾਪ ਉਥਾਪਨ ਹਾਰਾ, ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਛੁ ਪਾਰਾ ਵਾਰਾ। ਹੁਕਮੇ ਧਾਰ ਅਧਾਰ ਰਹਾਵੈ, ਹੁਕਮੇ ਉਪਜੈ ਹੁਕਮ ਸਮਾਵੈ। ਹੁਕਮੇ ਊਚ ਨੀਚ ਵਿਵਹਾਰ, ਹੁਕਮੇ ਅਨਕ ਰੰਗ ਪ੍ਰਕਾਰ। ਕਰ ਕਰ ਦੇਖੈ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ, ਨਾਨਕ ਸਭ ਮੈਂ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ। ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਮਨੁੱਖ ਗਤ ਪਾਵੈ, ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਪਾਤਰ ਤਰਾਵੈ। ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਬਿਨ ਸਵਾਸਥੇ ਰਾਖੈ, ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਹਰ ਗੁਣ ਭਾਖੈ। ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਪਤਤ ਉਧਾਰੈ, ਆਪ ਕਰੈ ਆਪਨ ਵਿਚਾਰੈ। ਦੋਹਾਂ ਸਿਰਿਆਂ ਕਾ ਆਪ ਸੁਆਮੀ, ਖੇਲੈ ਬਿਗਸੈ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ। ਜੋ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਾਰ ਕਰਾਵੈ, ਨਾਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਵਰ ਨ ਆਵੈ। ਕਹੋ ਮਾਨੁਖ ਤੇ ਕਿਆ ਹੋਏ ਆਵੈ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਾਵੈ। ਇਸ ਕੇ ਹਾਥ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਭ ਕਿਛੁ ਲੈ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰੇ। ਅਨ ਜਾਣਤ ਬਿਖਿਆ ਮੈਂ ਰਚੈ, ਜੇ ਜਾਣਤ ਆਪਨ ਆਪ ਬਚੈ। ਭਰਮੇ ਭੂਲਾ ਦੈ ਦਿਸ ਨ ਪਾਵੈ, ਭਰਮੇ ਭੂਲਾ ਦਹਿ ਦੇ ਸੁਤਾਵੈ। ਨਿਮਖ ਮਾਹੇ ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਫਿਰ ਆਵੈ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸੇ ਆਪਣੀ ਭਗਤ ਦੇ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਾਨ ਨਾਮ ਮਿਲੇ। ਖੇਨ ਮਹਿ ਨੀਚ ਕੀਟ ਕਉ ਰਾਜ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ। ਜਾ ਕਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਛੂ ਨਾ ਆਵੈ, ਤਿਸ ਤਤਕਾਲ ਦੈ ਦਿਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੈ। ਜਾ ਕਉ ਆਪਣੀ ਕਰੈ ਬਖਸੀਸ, ਤਾਕਾ ਲੇਖਾ ਨਾ ਗਣੈ ਜਗਦੀਸ਼। ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਿਸ ਕੀ ਰਾਸ, ਘਟ ਘਟ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਆਪਣੀ ਬਣਤ ਆਪ ਬਨਾਈ, ਨਾਨਕ ਜੀਵੈ ਦੇਖ ਬਡਾਈ। ਇਸ ਕਾ ਬਲ ਨਾਹੀ ਇਸ ਹਾਥ, ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਸਰਬ ਕੋ ਨਾਥ। ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬੱਪੂ ਰਾਜੀਓ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਫੁਨ ਥੀਓ। ਕਬਹੂ ਊਚ ਨੀਚ ਮੈਂ ਬਸੈ, ਕਬਹੂ ਸੋਗ ਹਰਖ ਰੰਗ ਹਸੈ। ਕਬਹੂ ਨਿੰਦ ਚਿੰਦ ਵਿਵਹਾਰ, ਕਬਹੂ ਊਬ ਆਕਾਸ਼ ਪਾਇਆਲ। ਕਬਹੂ ਬੇਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ, ਨਾਨਕ ਆਪ ਮਿਲਾਵਣ ਹਾਰ। ਕਬਹੂ ਨਿਰਤ ਕਰੇ ਬਹੁ ਭਾਂਤ, ਕਬਹੂ ਸੋਏ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਕਬਹੂ ਮਹਾਕ੍ਰੋਧ ਬਿਕਰਾਲ, ਕਬਹੂ ਸਰਬ ਕੀ ਹੋ ਤਰਵਾਲ। ਕਬਹੂ ਹੋਏ ਬਹਿ ਬੜ ਰਾਜਾ, ਕਬਹੂ ਭੇਖਾਰੀ ਨੀਚ ਕਾ ਸਾਜਾ। ਕਬਹੂ ਆਪ ਕੀਰਤ ਮਹਿ ਆਵੈ, ਕਬਹੂ ਭਲਾ ਭਲਾ ਕਹਾਵੈ। ਜਿਉ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖੈ ਤਿਵਹਿ ਰਹੈ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਸਾ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਕਬਹੂ ਹੋਏ ਪੰਡਤ ਕਰੇ ਬਖਿਆਨ, ਕਬਹੂ ਮੋਨ ਤਹਰੀ ਲਾਵੈ ਧਿਆਨ। ਕਬਹੂ ਤਟ ਤੀਰਥ ਇਸਨਾਨ, ਕਬਹੂ ਸਿੱਧ ਸਾਧਿਕ ਮੁਖ ਗਿਆਨ। ਕਬਹੂ ਕੀਟ ਹਸਤ ਪਤੰਗ ਹੋਏ ਜੀਆ, ਅਨਕ ਜਿਉਨ ਭਰਮੈ ਪਰਮੀਆ। ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਜਿਉ ਸੁਆਂਗੀ ਦਿਖਾਵੈ, ਜਿਉ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਨਚਾਵੈ। ਜਿਉ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨ ਕੋਏ। ਕਬਹੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਏ ਪਾਵੈ, ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਬਹੁਰ ਨ ਆਵੈ। ਅੰਤਰ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਕਾ ਨਹੀਂ ਬਿਨਾਸ਼। ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਰਤੇ ਇਕ ਰੰਗ, ਸਦਾ ਬਸੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੈ ਸੰਗ। ਜਿਉ ਜਲ ਮਹਿ ਜਲ ਆਏ ਖਟਾਨਾ, ਤਿਉ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਸਮਾਨਾ। ਮਿਟ ਗਏ ਗਵਨ ਪਾਏ ਬਿਸਰਾਮ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਨ। ਸਲੋਕ ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮਸਕੀਨੀਆ, ਆਪ ਨਿਵਾਰ ਤਲੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਹੰਕਾਰੀਆ। ਨਾਨਕ ਗਰਭ ਗਲੇ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਜਿਸ ਕੈ ਅੰਤਰ ਰਾਜ ਅਭਿਮਾਨ, ਸੋ ਨਰਕ ਪਾਤੀ ਹੋਵਤ ਸਵਾਨ। ਜੋ ਜਾਣੈ ਮੈਂ ਜੋ ਵਨਵੰਤ, ਸੋ ਹੋਵਤ ਬਿਸਟਾ ਕਾ ਜੰਤ।
आप सको कर्मवंत कहावै जन्म मरै बहु जून परमावै धन भूमिका जो करै गुमान सो मूर्ख अंधा अज्ञान कर कृपा जिस कै हृदय गरीबी बसावै नानक इहां मुकत आगै सुख पावै धनवंता होए कर गर्भावै तृण समान कछु संग न जावै बहु लस कर मानुख ऊपर करे आस पल पीतर ताका होए विनाश सब ते आप जाने बलवंत खिन मह होए जाए पसमंत किसै न बतै आप अहंकारी धर्म राय तिस करे खुआरी गुरु प्रसाद जाका मिटै अभिमान सो जन नानक दरगह परवान कूट कर्म करे हो तारे श्रम पावे सगले बिर थारे अनकत बस्या करे अहंकार नरक सुर्ग फिर अवतार अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवै हर दरगह कहो कैसे गवै आपस कहो जो भला कहावै तिसे भलाई निकट न आवै सर्ब किरेन जाका मन होए कहो नानक ताकि निर्मल सोए जब लग जाने मुझ ते काश होए तब इस कौ सुख नाही कोए जब इह जाने मैं किश करता तब लग गर्भ जोन मह फिरता जब तारै को बैरी मीत तब लग नह चलना ही चीत जब लग मोह मगन संग माए तब लग धर्म राय दे सजाए प्रभ किरपा ते बंधन टूटै गुर प्रसाद नानक हों छूटै सहस खटे लख कौ उठता वै त्रिपत न आवै माया पाछै पावै अनेक भोग बिख्या की करै नह त्रिपता वै खप खप मरै बिना संतोख नहीं को राजै सुपन मनोरथ बिरथे सब काजै नाम रंग सर्व सुख होए बड़भागी किसै परापत होए करण करावन आपे आप सदा सदा नानक हर जाप करन करावन करने हार इसके हाथ कहा विचार जैसी दृष्ट करे तैसा होए आपे आप प्रभ सोए जो कैश कीनो सो अपने रंग सब ते दूर सब हूं कै संग बूझै देखै करे बबेक आपे एक आपे अनेक मरे न बिनसै आवै न जाए नानक साध ही रहया समाए आप उपदेश है समझै आप आपे रचिया सबके साथ आप की नो आपन विस्थार सब कछ उसका ओ करने हार उस ते बिन कहो किश होए थान थनंतर एक सोए अपने चले तो आप करने हार कौतक करे रंग अपार मन महे आप मन अपने माहे नानक कीमत कह न जाए सत सत सत प्रभ स्वामी गुरु प्रसाद किने वख्यानी सच सच सच सब कीना कूट मधे किने बरलै चीना भला भला भला तेरा रूप अत सुंदर अपार अनूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी घट घट सुनी सरवन बख्याणी पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जपै नानक मन प्रीत सलोक संत सरण जो जन परै सो जन उदरण हार संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार अष्टपदी संत कै दुखन आर जा घटै संत कै दुखन जमते नहीं छुटै संत कै दुखन सुख सब जाए संत कै दुखन नरक मै पाए संत कै दुखन मत होए मलीन संत कै दुखन शोभा ते हीन संत के हते को रखे न कोए संत कै दुखन थान भ्रष्ट होए संत कृपाल कृपा जे करै नानक संत संग निंदक भी तरै संत के दुखन ते मुख पावै संतन कै दुखन काग ज्यो लवै संतन कै दुखन सर्प जोन पाए संत कै दुखन त्रिगद जोन किरमाए संतन कै दुखन तृष्णा मह जलै संत कै दुखन सब को शलै संत कै दुखन तेज सब जाए संत कै दुखन नीच नीचाए संत दुखी का थाऊ को नाहे नानक संत पावे ताउ ए पी गात पाहे संत का निंदक महा तताई संत का निंदक खेन टेकन न पाई संत का निंदक महा हत्यारा संत का निंदक परमेश्वर मारा संत का निंदक राज ते हीन संत का निंदक दुखिया अर दीन संत के निंदक को सर्व रोग संत के निंदक को सदा बिजोग संत की निंदा दुख मह दुख नानक संत पावै ता उसका भी होए मोख संत का दुखी सदा पवित संत का दुखी किसै का नहीं मित संत के दुखी को डान लागै संत के दुखी को शब्द त्यागै
संत का दुखी महा अहंकारी, संत का दुखी सदा बिकारी, संत का दुखी जन्म मरै, संत की दुख ना सुख ते तरै, संत के दुखी को नाही ठाउ, नानक संत पावे तां लै मिलाए, संत का दुखी अद बीच ते टूटै, संत का दुखी कितै काज ना पहुँचै, संत के दुखी कहो उद्यान प्रमाइय, संत का दुखी उजड़ पाई है, संत का दुखी अंतर ते थोथा, ज्यो सास बिना मृतक की लोथा, संत के दुखी की जड़ की सुनाहे, अपन बीज आपे ही खाहे, संत के दुखी को अवर न रखन हार, नानक संत पहावै तां लै उबार, संत का दुखी इउं बिल लाए, ज्यों जल बिहून मछली तड़फड़ाए, संत का दुखी भूखा नहीं राजै, ज्यों पावक ईदन नहीं त्रपै, संत का दुखी छुटे अकेला, ज्यों बुआड़ तेल खेत माहे दोहेला, संत का दुखी धर्म ते रहै तो, संत का दुखी सद मिथ्या कहै तो, किरत निंदक का तुर ही पाया, नानक जो तिस भावै सोई थेया, संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए, संत के दुखी को दरगाह मिले सजाए, संत का दुखी सदा सहकाइय, संत का दुखी ना मरे ना जीवाइय, संत के दुखी की पूजे ना आसा, संत का दुखी उठ चले निराशा, संत कै दुख न त्रिष्टै कोई, जैसा भाव है तैसा कोई होए पाया, किरत न मिटै कोई, नानक जान सचा सोए, सब घट तिस क्यो करने हार, सदा सदा तिस को नमस्कार, प्रभु की उस्तत करहो दिन रात, तिसे त्या वहो सास गिरास, सब कछु वरतै तिसका किया, जैसा करे तैसा को थिया, अपना खेल आप करने हार, दूसर कौन कहे विचार, जिसनो कृपा करै तिस अपन नाम दे, बटभागी नानक जन से, सलोक तज हो सियानप सुरजनाहो, सिमरहो हर हर राय, एक आस हर मन रखाहो, नानक दुख परम पहो जाए। अष्टपदी मानुख की टेक ब्रथी सब जान, देवन को एक भगवान, जिसके दिए रहे अघाए, बहुर न तृष्णा लग आए, मारे रख है एको आप, मानुख कह किशना ही हाथ, तिसका हुक्म बूझ सुख होए, तिसका नाम रख कंठ परोए, सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए, नानक बिघन न लागे कोए, उस्तत मन में कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार, निर्मल रसना अमृत पियो, सदा सुहेला कर लेहे जियो, नैनो पेखो ठाकुर का रंग, साध संग बिन सह सब संग, चरण चलो मार्ग गोबिंद, मिटह पाप जपिए हर बिंद, कर हर कर्म श्रवण हर कथा, हर दरगह नानक उजल मथा, बटभागी ते जन जग माहे, सदा सदा हर के गुण गाहे, राम नाम जो करह विचार, से तनवंत गने संसार, मान तान मोख बोलह हर मुखी, सदा सदा जन होते सुखी, एको एक एक पछाने, तो तकियो सोजी जान, नाम संग जिसका मन मानया, नानक तिन्ह निरंजन जानया, गुरप्रसाद आपन आप सुजै, तिसकी जान हो तृष्णा बुझै, साध संग हर हर जस कहत, सर्व रोग त्यो हर जन रहत, अन दिन कीर्तन केवल बख्यान, गृहस्थ मैं सोई निर्वाण, एक ऊपर जिस जन की आसा, तिस की कटिए जम की फासा, पार ब्रह्म की जिस मन भूख, नानक तिस है न लागह दुख, जिस काओ हार प्रभ मन चित आवै, सो संत सुहेला नहीं डोलावै, जिस प्रभ अपना कृपा करै, सो सेवक कहो किस ते डरै, जैसा सा तैसा दृष्टाया, अपने कार्य मह आप समाया, सोदत सोदत सोदत सीजिया, गुरु प्रसाद तत सब बूजिया, जब देखाओ तब सब किश मूल, नानक सो सूखम सोई असथूल, नह किश जन्मै नह किश मरै, आपन चले तो आप ही करै, आवन जावन दृष्ट आन दृष्ट, आज्ञाकारी धारी सब श्रेष्ठ, आपे आप सगल मह आप, अनिक जुगत राच थाप थाप, अभिनाशी नाही केश खंड, धारण धार रहो ब्रह्मांड, अलख अपेव पुरख परताप, आप जपाए त नानक जाप, जिन प्रभ जाता सुसुभावंत, सगल संसार उदरै तिन मंत,
प्रभ के सेवक सगल उधारन, प्रभ के सेवक दुख बेस्वारन, आपे मेल लय कृपाल, गुरु का शब्द जप परे निहाल, उनकी सेवा सोई लागे, जिसनो कृपा करे बड़ पागे, नाम जपत पावह विश्राम, नानक तिन पुरख कौ उत्तम कर मान, जो किश करे सो प्रभ कै रंग, सदा सदा बसाय हर संग, सहज सुपाए होवै सो होए, करणे हार पछाणै सोए, प्रभ का किया जन मीठ लगाना, जैसा सा तैसा दृष्टाना, जिस ते उपजे तिस माहे समाए, ओए सुख निधान उन्हु बन आए, आपस को आप दीनो मान, नानक प्रभ जन एको जान, सलोक सर्ब कला भरपूर प्रभ, बिरथा जन नहार, जाकै सिमरन उदरीय, नानक तिस बलहार, अष्टपदी टूटी गांडन हार, गोपाल सर्ब जिया आपे प्रतपाल, सगल की चिंता जिस मन माहे, तिस ते बिरथा कोई नाहे, रे मन मेरे सदा हर जाप, अविनाशी प्रभ आपे आप, आपन किया कछु न होए, जे सो प्राणी लोचै कोए, तिस बिन नाही तेरे किश काम, गत नानक जप एक हर नाम, रूपवंत होए नाही मोहै, प्रभ की जोत सगल घट सो है, तनवंता होए क्या को गर्भ है, जा सब किश तिसका दिया दर्भ है, अत सूरा जे को कहावै, प्रभ की कला बिना कहता है, जे को होए बहे दातार, तिस दिन हार जाने गावार, जिस गुर प्रसाद टूटे हो रोग, नानक सो जान सदा आरोग, ज्यो मंदर को थामै थमन, त्यो गुरु का शब्द मन है अस थमन, ज्यो पाखाण नाव चढ़ तरै, प्राणी गुरु चरण लागत निस तरै, ज्यो अंधकार दीपक प्रगास, गुरु दर्शन देख मन होए बिगास, ज्यो महाउद्यान महमार्ग पावै, त्यो साधु संग मेल जोत प्रगटावै, तिन संतन की बाशो तूर, नानक की हर लोचा पूर, मन मूर्ख काहे बिल लाइय, पुरब लिखिका लिखिया पाई है, दुख सुख प्रभ देवन हार, अवर त्याग तू तिसा है चितार, जो काश करे सोई सुख मान, भूला काहे फिर है अजान, कौन बस्त आई तेरा संग, लपट रहे ओ रस लोभी पतंग, राम नाम जप हिरदे माहे, नानक पत सेती घर जाहे, जिस वखर को लैन तू आया, राम नाम संतन कर पाया, तज अभिमान ले हो मन मोल, राम नाम हृदय मह तोल, लाद के पसंत है संगचाल, अवर त्याग बिखिया जंजाल, धन धन कहे सब कोए, मुख उजल हर दरग है सोए, एहो वापार गरला वापार, नानक तां कहे साध बलहार है, चरण साध के धोए धोए पियो, अर्प साध को अपना जियो, साध की धूर करो इशनान, साधु पर जाइए कुरबान, साध सेवा बड़ भागी पाइए, साध संग हर कीर्तन गाइए, अनेक बिघन ते साधु राख है, हर गुण गाय अमृत रस चाख है, ओट गही संत है दर आया, सर्व सुख नानक ते हे पाया, मेरे तक को जीवा लनहार, भूखे को देवता आधार, सर्व निधान जाकी दृष्टि माहे, पूर्व लिखे का लहना पाहे, सब किश तिसका ओ करने जोग, तिस बिन दूसर हुआ ना होग, जाप जान सदा सदा दिन रहनी, सब ते ऊच निर्मल एह करनी, कर कृपा जिस कौ नाम दिया, नानक सो जान निर्मल थिया, जाके मान कुर गुर की प्रतीत, तिस जन आवै हर प्रभ जीत, भगत भगत सुनिए ते हो लोए, जाके हृदय एको होए, सच करनी सच ताकी रहत, सच हृदय सत मुख कहत, सची दृष्ट साचा आकार, सच वरत साचा पासार, पार ब्रह्म जिन सच कर जाता, नानक सो जान सच समाता, सलोक रूप न रेख न रंग केशो, त्रै हो गुण ते प्रभ भिन्न, तिसे बुझाए नानका जिस हो वै सु प्रसन्न, अष्टपदी अभिनाशी प्रभ मन मह राख, मानुख की तू प्रीत त्याग, तिस ते पर नाही किश कोए, सर्व निरंतर एको सोए, आपे बिना आपे दाना, गहर गंभीर गहीर सो जाना, पार ब्रह्म परमेश्वर गोबिंद, कृपा निधान दयाल बख्शंद, साध तेरे की चरणी पाओ, नानक कै मान एहो अनराओ, मनसा पूर्ण सरणा जोग, जो कर पाया सोई होग, हरण परन जाका नेत्र फोर, तिसका मंत्र न जाने होर, आनंद रूप मंगल सद जाकै, सर्व थोक सुनिए करता कै,
राज मैं राज जोग मैं जोगी तप मैं तपीसर गृहस्थ मैं भोगी त्याय त्याय भगत है सुख पाया नानक तिस पुरख का किने अंत न पाया जाकी लीला की मित नाहे सगल देव हारे अवगाहे पिता का जन्म के जानै पूत सगल परोई आपु नै सूत सुमत ज्ञान ध्यान जन दे जान दास नाम त्यावह से तेहो गुण मैं जाको परमाए जन्म मरै फिर आवै जाए ऊच नीच तिसके अस्थान जैसा जन आवै तैसा नानक जान नाना रूप नाना जाके रंग नाना पेख करै करंग नाना बिद कीनो बिसथार प्रभ अबे नासी एकंकार नाना चलित करे खिन माहे पूर रहो पूर्ण सब ठाए नाना वेद कर बंत बनाई अपनी कीमत आपे पाई सब घट तिसके सब तिसके ठाओ जप जप जीव नानक हर नाओ नाम के तारे सगले जंत नाम के तारे खंड ब्रह्मांड नाम के तारे सिमरत वेद पुराण नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान नाम के तारे आगास पाताल नाम के तारे सगल आकार नाम के तारे पुरियां सब पवन नाम कै संग उदरे सुन श्रवण कर कृपा जिसे अपने नाम लाए नानक चौथे पद में सो जन गत पाए रूप सत जाका सत अस्थान पुरख सत केवल प्रधान करतूत सत सत जाकी बाणी सत पुरख सब माहे समाणी सत करम जाकी रचना सत मूल सत सत उत्पत सत करणी निर्मल निर्मली जिसे बुझाए तिस है सब भली सत नाम प्रभ का सुखदाई विश्वास सत नानक गुर ते पाई सत बचन साधु उपदेश सत ते जान जा कर दे प्रवेश सत निरत बुझै जे कोई नाम जपत ताकी गत होए आप सत किया सब सत आपे जाने अपनी मित गत जिस की श्रेष्ठ सो करने हार अवर न बूझ करत विचार करते की मित न जाने किया नानक जो तिस पावै सो वर्तिया बिस्मन बिस्म पय बिस्माद जिन बूझिया तिस आया स्वाद प्रभ कै रंग राज जन रहे गुर कै बचन पदार्थ लहे ओए दाते दुख काटन हार जाकै संग तरै संसार जन का सेवक सो वड भागी जन कै संग एक लिब लागी गुण गोबिंद कीर्तन जन गावै गुर प्रसाद नानक फल पावै सलोक आद सच जुगाद सच है पे सच नानक होसी पे सच अष्टपदी चरण सत सत परसन हार पूजा सत सत सेवदार दर्शन सत सत पेखन हार नाम सत सत त्यावन हार आप सत सत सब तारी आपे गुण कारी शब्द सत सत प्रभ बकता सुरत सत सत जस सुनता बुजन हार को सत सब होए नानक सत सत प्रभ सोए सत सरूप हृदय जिन मान्या करण करावण तिन मूल पछान्या जाकै हृदय विश्वास प्रभ आया तत ज्ञान ते समान प्रगटाया भय ते निरपहो होए बसाना जिस ते उपजिया तिस माहे समाना बस्त माहे ले बस्त गडाई ता कौ भिन न कहना जाई बूझै बूझन हार बबेक नारायण मिले नानक एक ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी ठाकुर का सेवक सदा पुजारी ठाकुर के सेवक कै मन प्रतीत ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत ठाकुर को सेवक जानै संग प्रभ का सेवक नाम कै रंग सेवक को प्रभ पालन हारा सेवक की राखै निरंकारा सो सेवक जिस दया प्रभ धारै नानक सो सेवक सास सास सुमारै अपने जन का पर्दा ढाकै अपने सेवक की सर पर राखै अपने दास कौ दे वडाई अपने सेवक कौ नाम जपाई अपने सेवक की आप पात राखै ताकि गत में तो कोई न लाखै प्रभ के सेवक कौ को ना पहुचै प्रभ के सेवक ऊच ते ऊचे जो प्रभ अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दै दिस प्रगटाया निकी कीरी मैं काल राखै भस्म करै लस्कर कोट लाखै जिसका सास न काढ़ते आप ताको राखत देकर हाथ मानस जतन करत बह भांत तिसके कर तब बिरथे जात मारे न रखै अवर न कोए
ਸਰਬ ਜੀਆ ਕਾ ਰਾਖਾ ਸੋਏ, ਕਾਹੇ ਸੋਚ ਕਰਹੇ ਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਜਪ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਅਲਖ ਵਿੜਾਣੀ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਬਾਰ ਪ੍ਰਭ ਜਪੀਐ, ਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਹੋ ਮਨ ਤਨ ਤ੍ਰਪੀਐ, ਨਾਮ ਰਤਨ ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਇਆ, ਤਿਸ ਕਿਸੇ ਅਵਰ ਨਾਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਇਆ, ਨਾਮ ਧਨ ਨਾਮੋ ਰੂਪ ਰੰਗ, ਨਾਮੋ ਸੁਖ ਹਰ ਨਾਮ ਕਾ ਸੰਗ, ਨਾਮ ਰਸ ਜੋ ਜਾਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾਨੇ, ਮਨ ਤਨ ਨਾਮੇ ਨਾਮ ਸਮਾਨੇ, ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਨਾਮ, ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੈ ਸਦ ਕਾਮ, ਬੋਲੋ ਜਸ ਜੇਬਾ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਜਨ ਕੀ ਨੀ ਦਾਤ, ਕਰਹਿ ਭਗਤ ਆਤਮ ਕੈ ਚਾਏ, ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਸਿਉ ਰਹਿ ਸਮਾਏ, ਜੋ ਹੋ ਆ ਹੋਵਤ ਸੋ ਜਾਣੈ, ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਕਾ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੈ, ਤਿਸ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕੌਣ ਬਖਾਨੋ, ਤਿਸ ਕਾ ਗੁਣ ਕਹਿ ਏਕ ਨਾ ਜਾਣੋ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਪ੍ਰਭ ਬਸੇ ਹਜੂਰੇ, ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਹੀ ਜਨ ਪੂਰੇ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਤਿਨ ਕੀ ਓਟ ਲੇਹੇ, ਮਨ ਤਨ ਆਪਣਾ ਤਿਨ ਜਨ ਦੇਹੇ, ਜਿਨ ਜਨ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਛਾਤਾ, ਸੋ ਜਨ ਸਰਬ ਥੋਕ ਕਾ ਦਾਤਾ, ਤਿਸ ਕੀ ਸਰਨ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵਾ ਹੈ, ਤਿਸ ਕੈ ਦਰਸ ਸਭ ਪਾਪ ਮਿਟਾਵਾ ਹੈ, ਅਵਰ ਸਿਆਨਪ ਸਗਲੀ ਛਾਡ, ਤਿਸ ਜਨ ਕੀ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਲਾਗ, ਆਵਨ ਜਾਨਾ ਹੋਵੀ ਤੇਰਾ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕੇ ਪੂਜਾ ਹੋ ਸਦ ਪੈਰਾ, ਸਲੋਕ ਸਤ ਪੁਰਖ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ, ਸਤ ਗੁਰ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਉ, ਤਿਸ ਕੈ ਸੰਗ ਸਿਖ ਉਦਰੈ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਉ ਅਸ਼ਟਪਦੀ, ਸਤ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ ਕਰੈ ਪ੍ਰਤਪਾਲ, ਸੇਵਕ ਕਉ ਗੁਰ ਸਦਾ ਦਇਆਲ, ਸਿੱਖ ਕੀ ਗੁਰਦੁਰਮਤ ਮਲ ਹਿਰੈ, ਗੁਰਬਚਨੀ ਹਰ ਨਾਮ ਉਚਰੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਟੈ, ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਬਿਗਾਰ ਤੇ ਹਟੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ ਨਾਮ ਤਨ ਦੇ, ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਡਭਾਗੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਾ ਹਲਤ ਪਲਤ ਸਵਾਰੈ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਉ ਜੀ ਨਾਲ ਸਮਾਰੈ, ਗੁਰ ਕੈ ਗ੍ਰਹਿ ਸੇਵਕ ਜੋਰਾ ਹੈ, ਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਨ ਮੈਂ ਸਾਹੈ, ਆਪਸ ਕਉ ਕਰ ਕਛ ਨਾ ਜਨਾਵੈ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਸਦ ਧਿਆਵੈ, ਮਨ ਬੇਚੈ ਸਤ ਗੁਰ ਕੈ ਪਾਸ, ਤਿਸ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ, ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਏ ਨਹਿ ਕਾਮੀ, ਤਿਸ ਕਉ ਹੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਆਮੀ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪ ਕਰੇ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕ ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਲੇ, ਬੀਸ ਬਿਸਵੇ ਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮਾਨੈ, ਸੋ ਸੇਵਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਗਤ ਜਾਣੈ, ਸੋ ਸਤ ਗੁਰ ਜਿਸ ਹਿਰਦੈ ਹਰ ਨਾਉ, ਅਨਿਕ ਬਾਰ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਜਾਉ, ਸਰ ਬਿਨੇ ਧਾਨ ਜੀ ਕਾ ਦਾਤਾ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਰੰਗ ਰਾਤਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਮੈਂ ਜਨ ਜਨ ਮਹਿ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਏ ਕਹਿ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਾਸ਼ ਭਰਮ, ਸਹਸਿਆਣ ਪਲਿਆ ਨ ਜਾਈਐ, ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਗੁਰ ਬਡ ਭਾਗੀ ਪਾਈਐ, ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਪੇਖਤ ਪੁਨੀਤ, ਪਰਸਤ ਚਰਨ ਗਤ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ, ਭੇਟਤ ਸੰਗ ਰਾਮ ਗੁਣ ਰਵੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਦਰਗਾਹ ਗਵੇ, ਸੁਨ ਕਰ ਬਚਨ ਕਰਨ ਆਘਾਨੇ, ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਆਤਮ ਪਤੀਆਂ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਅਖਿਓ ਜਾਕਾ ਮੰਤ੍ਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਭੇਖੈ ਹੋਏ ਸੰਤ, ਗੁਣ ਬੇਅੰਤ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਲਏ ਮਿਲਾਏ, ਜਿਹ ਬਾਏਕ ਉਸਤਤ ਅਨੇਕ, ਸਤ ਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਬਬੇਕ, ਕਾਹੂ ਬੋਲ ਨਾ ਪਹੁਚਤ ਪ੍ਰਾਨੀ, ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਪ੍ਰਭ ਨਿਰਬਾਨੀ, ਨਿਰਾਹਾਰ ਨਿਰਵੈਰ ਸੁਖਦਾਈ, ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਮਤ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਈ, ਅਨੇਕ ਭਗਤ ਬੰਧਨ ਨਿਤ ਕਰ ਹੈ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਹਿਰਦੈ ਸਿਮਰ ਹੈ, ਸਦਬਲਹਾਰੀ ਸਤ ਗੁਰ ਆਪਣੇ, ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਐਸਾ ਪ੍ਰਭ ਜਪਨੇ, ਇਹੋ ਹਰ ਰਸ ਪਾਵੈ ਜਨ ਕੋਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਏ, ਉਸ ਪੁਰਖ ਕਾ ਨਾਹੀ ਕਦੇ ਬਿਨਾਸ, ਜਾ ਕੈ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟੇ ਗੁਣ ਤਾਸ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਲੇ, ਸਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੇਵਕ ਕਉ ਦੇ, ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਕੈ ਸੰਗ ਨ ਲੇਪ, ਮਨ ਮਹਿ ਰਾਖੈ ਹਰ ਹਰ ਏਕ, ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਪਕ ਪਰਗਾਸੇ, ਨਾਨਕ ਭਰਮ ਮੋਹ ਦੁਖ ਤਹਿ ਤੇ ਨਾਸੇ, ਤਪਤ ਮਾਹੇ ਠਾੜ ਵਰਤਾਈ, ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਦੁਖ ਨਾਠੇ ਪਾਈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੇ ਮਿਟੇ ਅੰਦੇਸੇ, ਸਾਧੂ ਕੇ ਪੂਰਨ ਉਪਦੇਸੇ, ਭਉ ਚੂਕਾ ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਬਸੇ, ਸਗਲ ਬਿਆਦ ਮਨ ਤੇ ਖੈ ਨਸੇ, ਜਿਸ ਕਾ ਸਾਥ ਤਿਨ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰੀ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਪ ਨਾਮ ਮੁਰਾਰੀ,
थेत पाई चूके भ्रम गवन सुन नानक हर हर जस श्रवन निर्गुण आप सर गुण पी ओही कलातार जिन सगली मोही अपने चरित प्रभ आप बनाए अपनी कीमत आपे पाए हर बिन दूजा नाही कोए सर्ब निरंतर एको सोए ओत पोत रव्या रूप रंग भय प्रगास साधक संग रच रचना अपनी काल तारी अनेक बार नानक बलहारी सलोक साथ न चाले बिन भजन बिखया सगली शार हर हर नाम कमावना नानक एहो तन सार अष्टपदी संत जना मेल करहु विचार एक सिमर नाम आधार अवर उपाव सब मीत बिसार रहौ चरण कमल रिद मैं उरतार रहौ करण कारण सो प्रभ समरथ दृढ़ कर गहु नाम हर वथ एहु तन संच हो वो भगवंत संत जना का निर्मल मंत एक आस राखु मन माहे सर्व रोग नानक मिट जाए जिस धन कौ चार कुंट उठता वह सो धन हर सेवा ते पावह जिस सुख कौ नित बादशाह मीत सो सुख साधु संग परीत जिस शोभा को करह भली करनी सा शोभा भज हर की सरनी अनको पावी रोग न जाए रोग मिटाय हर अवखद लाए सर्व निधान मह हर नाम निधान जप नानक दरगह प्रवान मन प्रबोध हो हर कह नाए दैद सताव ते आवठाए ताकौ बिगन न लागै कोई जाकै हृदय बसै हर सोए कल ताती ठंडा हर नाउ सिमर सिमर सदा सुख पाओ पाओ बिन सै पूरन होए आस भगत पाए आत्म प्रगास तित घर जाए बसै अबिनासी कहो नानक काटी जम फासी तत विचार कह जन साचा जन्म मरै सो काचो काचा आवागवन मिटै प्रभ सेव आप त्याग सरण गुरुदेव इयों रत्न जन्म का होए उदाहर हर हर सिमर प्राण आधार अनेक उपावना छूटन हारे सिमरत शास्त्र वेद बिचारे हर की भगत करहु मन लाए मन बंशत नानक फल पाए संग न चाल सुते रहता तू क्या लपटावा है मूर्ख मना सुत मीत कुटंब अर बनता इन ते कहो तुम कवन सुनाथा राज रंग माया विस्थार इनते कहो हो कवन छुटकार अस हस्ती रथ असवारी झूठा डंभ झूठ पासारी जिन दिए तिस बुझे ना बेगाना ना बिसार नानक पशुताना गुर की मत तू ले आने भगत बिना बहु डूबे सियाने हर की भगत करहु मन मीत निर्मल होए तुम्हारो चीत चरण कमल राखु मन माहे जन्म जन्म के किल बिख जाहे आप जप हो अवरा नाम जपा वाहौ सुनत कहत रहत गत पा वाहौ सार भूत सत हर को नाउ सह सुबाए नानक गुण गाओ गुण गावत तेरी उतरस मैल बिन सजाए हो मैं बेखु फैल होहे अचिंत बसै सुख नाल सास ग्रास हर नाम समाहल शाड़ सियान पसगली मना साध संग पावह सच तना हर पूंजी सांच करहो व्यवहार इहां सुख दरगह जयकार सर्व निरंतर एको देख कहो नानक जाके मस्तक लेख एको जप एको सलाहे एक सिमर एको मन आहे एक के गुण गाओ अनंत मन तान जाप एक भगवंत एको एक एक हर आप पूर्ण पूर रहे ओ प्रभ व्याप अनेक विस्थार एक ते पहे एक आराध पराशत गए मन तन अंतर एक प्रभरता गुर प्रसाद नानक एक जाता सलोक फिरत फिरत प्रभ आया परया तो सरनाए नानक की प्रभ बेनती अपनी भक्ति लाए अष्टपदी जाचक जन जाचै प्रभदान कर कृपा देवो हर नाम साध जना की मांगो तूर पार ब्रह्म मेरे सरदा पूर सदा सदा प्रभ के गुण गावो सास सास प्रभ तुम्हें त्यावो चरण कमल सिंह लागै प्रीत भगत करो प्रभ की नित नीत एक ओट एको एक ओट एको आधार नानक मांगै नाम प्रभ सार
प्रभ की दृष्ट महा सुख होए, हर रस पावै बिरला कोए, जिन चाख्या से जन तृप्ता ने, पूर्ण पुरख नहीं डोला ने, सुपर परे प्रेम रस रंग, उपजै चाओ साध कै संग, परे शरण आन सब त्याग, अंतर प्रगास आन दिन लिवलाग, बड़भागी जपया प्रभ सोए, नानक नाम रते सुख होए, सेवक की मनसा पूरी पई, सतगुर ते निर्मल मत लई, जन कहो प्रभ होयो दयाल, सेवक कीनो सदा निहाल, बंधन काट मुकत जन भया, जन मरण दुख भ्रम गया, ऐश पुन्नी सरदा सपूरी, रव रहया सत संग हजूरी, जिसका सा तिन लिया मिलाए, नानक भगती नाम समाए, सो क्यों बिसरै जे काल ना पाने, सो क्यों बिसरै जे किया जाने, सो क्यों बिसरै जिन सब किश दिया, सो क्यों बिसरै जे जीवन जिया, सो क्यों बिसरै जे अगन में राखै, गुर प्रसाद को बिरला लाखै, सो क्यों बिसरै जे बिख ते काढ़ै, जन्म जन्म का टूटा गांडै, गुरपुरै तत इह बुझाया, प्रभ अपना नानक जन त्याया, साजन संत करो एहो काम, आन त्याग जप हो हर नाम, सिमर सिमर सिमर सुख पावहो, आप जप हो अवरह नाम जपावहो, भगत पाए तरी है संसार, बिन भगती तन हो सीशार, सर्ब कल्याण सुख निद नाम, बूढ़त जात पाए बिश्राम, सगल दुख का हो वतनासो, नानक नाम जप हो गुणतासो, उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ, मन तन अंतर ही सुआओ, नेत्रों पेख दर्श सुख होए, मन बिगसै साध चरण धोए, भगत जना कै मन तन रंग, बिरला को पावै संग, एक बस्त दीजै कर मया, गुर प्रसाद नाम जप लया, ताकि उपमा कही न जाए, नानक रहया सर्ब समाए, प्रभ बखशंद दीन दयाल, भगत वशल सदा कृपाल, अनाथ नाथ गोबिंद गोपाल, सर्व कटा करत प्रतपाल, आद पुरख कारण करतार, भगत जना के प्राण आधार, जो जो जपाए सो होए पुनीत, भगत पाए लावे मन हीत, हम निर्गुणियार नीच अजान, नानक तुमरी सरन पुरख भगवान, सर्ब बैकुंठ मुकत मोख पाए, एक निमक हर के गुण गाए, अनक राज भोग बडयाई, हर के नाम की कथा मन पाई, बहु भोजन कापर संगीत, रसना जपती हर हर नीत, भली सो करने सो बा धनवंत, हृदय बसे पूर्ण गुरमंत, साध संग प्रभ देहु निवास, सर्ब सुख नानक प्रगास, सलोक सरगुण निर्गुण निरंकार, सुन समाधि आपो, आपन किया नानका, आपे ही फिर जापो, अष्टपदी, जब आकार एहो काशना, दृष्टिता पाप पुन तब कहते होता, जब तारी आपन सुन समाद, तब बैर विरोध किस संग कमात, जब इसका वर्ण चिन्ह न जापत, तब हरक सोग कहो किस व्यापत, जब आपन आप पार ब्रह्म, तब मोह कहां किस होवत परम, आपन खेल आप वरती जा, नानक करने हार ना दूजा, जब होवत प्रभ केवल तनी, तब बंद मुकत कहो किस कौ गनी, जब एक है हर अगम अपार, तब नरक सुर्ग कहो कौन अवतार, जब निर्गुण प्रभ सह सुबाए, तब सेव साकत कहो के तठाए, जब आप है आप अपनी ज्योत धरै, तब कवन निडर कवन कत डरै, आपन चले तो आप करने हार, नानक ठाकुर अगम अपार, अभिनाशी सुख आपन आसन, तह जन्म मरण कहो कहा बिनासन, जब पूर्ण करता प्रभ सोए, तब जम की त्रास कहो हो किस होए, जब अवगत अगोचर प्रभ एका, तब चित्रगुप्त कैस पूछत लेखा, जब नाथ निरंजन अगोचर आगादे, तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे, आपन आप ही अचर जा, नानक आपन रूप आप ही उपर जा, जह निर्मल पुरख पुरख पत होता, तह बिन मैल कहो क्या तोता, जह निरंजन निरंकार निर्बान, तह कौन कौ मान कौन अभिमान, जह स्वरूप केवल जगदीश, तह शाल शिदर लगत कहो कीस, जह ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावै, तह किस है भूख कवन तृपतावै, करण करावन करने हार, नानक करते का नाहे सुमार,
जब अपने शोभा आपन संग बनाई तब कवन माए बाप मित्र सोत पाई जह सर्व कला आपे प्रवीण तह वेद कतेव कह को चीन जब अपन आप उरतार ताओ सगन आप सगन कहा बिचार जह अपन ऊच अपन आप नेरा तह कौन ठाकुर कौन कहिए चेरा बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद नानक अपने गात जान हो आप जह अशाल अशेद अभेद समाया उहां के सह व्यापत माया आपस कौ आपे आदेश तेह गुण का नाही प्रवेश जह एक एक एक भगवंता तह कौन अचिंत किस लागे चिंता जह अपन आप पतियारा तह कौन कथा कौन सुनने हारा बहु बेअंत ऊच ते ऊचा नानक आपस को आपे पहुचा जह आप रचियो प्रपंच अकार तेह गुण मैं कीनो बिस्थार पाप पुन तय पई कहावत को न।

बाणी प्रभ की सब को बोले, आप अडोल न कबहू डोले, सर्ब कला कर खेले खेल, मोल न पाई है गुण है अमोल, सर्ब ज्योत में जाकी ज्योत, तार रहे ओ स्वामी ओत पोत, गुर प्रसाद परम का नास, नानक तिन मैं एहो बिसास, संत जना का पेखन सब ब्रह्म, संत जना के हृदय सब धर्म, संत जना सुनहे शुभ बचन, सर्व व्यापी राम संग रचन, जिन जाता तिसकिए रहत, सत बचन साधु सब कहत, जो जो होए सोई सुख माने, करण करावन हार प्रभ जाने, अंतर बसे बाहर पियो ही, नानक दर्शन देख सब मोही, आप सत किया सब सत, तिस प्रभ ते सगली उत्पत, तिस भावे ता करे विस्थार, तिस भावे ता एकंकार, अनक कला लखी न जाए, जिस भावे तिस लय मिलाए, कवन निकट कवन कही है दूर, आपे आप आप भरपूर, अंतर्गत जिस आप जनाए, नानक तिस जाने आप बुझाए, सर्व भूत आप वरतारा, सर्व नैन आप पेखनहारा, सगल समग्री जाका तना, आपन जस आप ही सुना, आवन जान एक खेल बनाया, आज्ञाकारी की नी माया, सब कहे मद अलिप तो रहै, जो किश कहना सो आपे कहे, आग्या आवे आग्या जाए, नानक जा पावे ता लय समाए, इस ते होए सुनाही बुरा, उरै कहो किने काश करा, आप भला करतूत आतनी की, आपे जाने अपने जी की, आप साच तारी सब साच, ओत पोत अपन संगराच, ताकि गात में त कही न जाए, दूसर होए ता सोजी पाए, तिसका किया सब प्रवान, गुर प्रसाद नानक एहो जान, जो जानै तिस सदा सुख होए, आप मिलाए लय प्रभ सोए, ओह धनवंत कुलवंत पतवंत, जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत, धन धन धन जन आया, जिस प्रसाद सब जगत तराया, जन आवन का एह सुआउ, जन कै संग चित आवै नाउ, आप मुक्त मुक्त करे संसार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार। श्लोक

अष्टपदी पूरे गुरु का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेखो सास सास सिमरो गोबिंद मन अंतर की उतरै चिंद आस अनित त्याग हो त्रंग संत जना की तूर मन मंग आप छोड़ बेनती करहो साध संग अग्न सागर तरहो हर तन के पर लिहो पंडार नानक गुर पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद साध संग भज परमानंद नरक निवार उदार हो जियो गुण गोबिंद अमृत रस पियो चित चित वहो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दामोदर दीन दयाल दुख भंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का हे आधार उत्तम सलोक साध के बचन अमुलीक लाल एह रतन सुनत कुमावत हो तो उधार आप तरह लोक है निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जा कै मन लागा हर रंग जय जय शब्द अनाहद वाजय सुन सुन आनंद करे प्रभ गाजय प्रगटे गोपाल महांत कै माथे नानक उधरै तिनके साथे सरण जोग सुन सरणी आए कर कृपा प्रभ आप मिलाए मिट गए बैर पय सबरेन अमृत नाम साध संग लैन सो प्रसन्न पय गुरुदेव पूरन होई सेवक की सेव आल जंजाल विकार ते रहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रभ तारी नानक निभी ठेप हमारी प्रभ की उस्तत करहु संत मीत सावधान एकाग्र चीत सुखमनि सहज गोबिंद गुण नाम जिस मन बसे सो होत निधान सर्व इच्छा ताकी पूरन होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए सब ते उच पाए अस्थान बहुर न होवे आवन जान हर तन खाट चले जन सोए नानक जिस है प्राप्त होए खेम शांत रेद नव निध बुद्ध ज्ञान सर्व तह सिद्ध विद्या तप जोग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम इशनान चार पदार्थ कमल प्रगास सब कै मद सगल ते उदास सुंदर चतुर तत का बेता समदर्शी एक दृष्टिता ए फाल तिस जन कै मुख पने गुरु नानक नाम बचन मन सुने एहो निदान जपै मन कोए सब जुग मैं ताकी गत होए गुण गोबिंद नाम तुन बाणी सिमरत शास्त्र बेद बखाणी सगल मतांत केवल हर नाम गोबिंद भगत कै मन बिसराम कोट अपराध साध संग मिटाए संत कृपा ते जमते छुटाए जा कै मस्तक करम प्रभ पाए साध सरण नानक ते आए जिस मन बसै सुनै लाए प्रीत तिस जन आवे हर प्रभ चीत जन्म मरण ताका दुख निवारै दुलभ देह तत्काल उधारै निर्मल शोभा अमृत ताकी बानी एक नाम मन माहे समानी दुख रोग बिन से पै परम साधनाम निर्मलता के कर्म सब ते ऊचता की शोभा बनी नानक एह गुण नाम सुख मनी सब

सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन बिसराम। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿ ਭੰਗ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲਖਵਾਰੂ, ਚੁੱਪੈ ਚੁੱਪ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਲਾਏ ਰਹਾ ਲਿਵਤਾਰੂ, ਭੁੱਖਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆਂ ਭਾਰੂ, ਸਹਿ ਸੁਸਿਆਣਪਾਂ ਲੱਖ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨ ਚੱਲੈ ਨਾਲ, ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ ਕਿਵ ਕੂੜੈ ਤੁੱਟੈ ਪਾਲ, ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ, ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮ ਨ ਕਹਿਆ ਜਾਈ, ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਜੀ ਹੁਕਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ, ਹੁਕਮੀ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਪਾਈਐ, ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸੀਸ ਇੱਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਪਵਾਈਐ, ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁੱਝੈ ਤਾਂ ਹੋਮੈ ਕਹਿ ਨਾ ਕੋਏ, ਗਾਵੈ ਕੋ ਤਾਣ ਹੋਵੈ ਕਿਸੈ ਤਾਣ, ਗਾਵੈ ਕੋ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਗਾਵੈ ਕੋ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈਆਂ ਚਾਰ, ਗਾਵੈ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਵਿਕਮ ਵਿਚਾਰ, ਗਾਵੈ ਕੋ ਸਾਜ ਕਰੇ ਤਨ ਖੇਹੇ, ਗਾਵੈ ਕੋ ਜੀ ਲੈ ਫਿਰ ਦੇਹ, ਗਾਵੈ ਕੋ ਜਾਪੈ ਦਿਸੈ ਦੂਰ, ਗਾਵੈ ਕੋ ਵੇਖੈ ਹਾਦਰਾ ਹਦੂਰ, ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨ ਆਵੈ ਤੋਟ, ਕਥ ਕਥ ਕਥੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਕੋਟ, ਦੇਦਾ ਦੇ ਲੈ ਦੇ ਥਕ ਪਾਹੀ, ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ, ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾਹੋ, ਨਾਨਕ ਵਿਕਸੈ ਵੇ ਪਰਵਾਹੋ, ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚ ਨਾਏ, ਭਾਖਿਆ ਭਉ ਅਪਾਰੂ, ਆਖਹਿ ਮੰਗਹਿ ਦੇਹ ਦੇ ਦਾਤ ਕਰੇ ਦਾਤਾਰੂ, ਫੇਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਐ ਜਿਤ ਦਿਸੈ ਦਰਬਾਰੂ, ਮੁਹਾਉ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਐ ਜਿਸਨ ਧਰੇ ਪਿਆਰੂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰੂ, ਕਰਮੀ ਆਵੈ ਕੱਪੜਾ ਨਦਰੀ ਮੁਖ ਦੁਆਰੂ, ਨਾਨਕੀ ਵੈ ਜਾਣੀਐ ਸਭ ਆਪੇ ਸਚਿਆਰੂ, ਤਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ, ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮਾਨੂ, ਨਾਨਕ ਗਾਵੀਐ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨੂ, ਗਾਵੀਐ ਸੁਣੀਐ ਮਨ ਰੱਖੀਐ ਭਾਉ, ਦੁਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁਖ ਘਰ ਲੈ ਜਾਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਰਿਹਾ ਸਮਾਈ, ਗੁਰਿਸ਼ਰ ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਬਰਮਾ ਗੁਰਪਾਰਵਤੀ ਮਾਈ, ਜੇ ਹਉ ਜਾਣਾ ਆਖਾਂ ਨਾਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਥਨ ਨ ਜਾਈ, ਗੁਰਾ ਇਕ ਦੇਹ ਬੁਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇਕ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨ ਜਾਈ, ਤੀਰਥ ਨਾਵਾਂ ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵਾਂ ਵਿਣ ਭਾਣੇ ਕੇ ਨਾਏ ਕਰੀ, ਜੀਤੀ ਸਿਰ ਠੋ ਪਾਈ ਵੇਖਾਂ ਵਿਣ ਕਰਮਾਂ ਕੇ ਮਿਲੈ ਲਈ, ਮਤ ਵਿਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਨਕ ਜੇ ਇਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ, ਗੁਰਾ ਇਕ ਦੇਹ ਬੁਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇਕ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ, ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰ ਜਾ ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਏ, ਨਵਾਂ ਖੰਡਾ ਵਿਚ ਜਾਣੀਐ ਨਾਲ ਚੱਲੈ ਸਭ ਕੋਏ, ਚੰਗਾ ਨਾਉ ਰਖਾਏ ਕੈ ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗ ਲੇ, ਜੇ ਤਿਸ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵਈ ਤਾਂ ਵਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੈ ਕੀ, ਕੀਟਾ ਅੰਦਰ ਕੀਟ ਕਰ ਦੋਸੀ ਦੋਸ ਧਰੇ, ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਰੇ ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਗੁਣ ਦੇ, ਤੇਹਾ ਕੋਈ ਨ ਸੁਜਈ ਜੇ ਤਿਸ ਗੁਣ ਕੋਈ ਕਰੇ, ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ, ਸੁਣਿਆ ਧਰਤ ਧਵਲਾ ਕਾਲ, ਸੁਣਿਆ ਦੀਪ ਲੋ ਪਾਤਾਲ, ਸੁਣਿਆ ਪੋਹੇ ਨ ਸਕੈ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ, ਸੁਣਿਆ ਈਸ਼ਰ ਬਰਮਾ ਇੰਦ, ਸੁਣਿਆ ਮੁਕਸਾਲਾ ਹਨੁਮੰਦ, ਸੁਣਿਆ ਜੋਗ ਜੁਗ ਤਨ ਭੇਦ, ਸੁਣਿਆ ਸਾਸਤ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ, ਸੁਣਿਆ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ, ਸੁਣਿਆ ਅੜਸਠ ਕਾ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਸੁਣਿਆ ਪੜ ਪੜ ਪਾਵਹਿ ਮਾਨ, ਸੁਣਿਆ ਲਾਗੈ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾ, ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾ, ਸੁਣਿਆ ਸਰਾ ਗੁਣਾ ਕੇ ਗਾ, ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਖ ਪੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸੁਣਿਆ ਅੰਦੇ ਪਾਵੈ ਰਾਹੁ, ਸੁਣਿਆ ਹੱਥ ਵੈ ਸਗਾਹੁ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾ, ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾ, ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਜੇ ਕੋ ਕਹਿ ਪਿਛੈ ਪਛਤਾਏ, ਕਾਗਦ ਕਲਮ ਨ ਲਿਖਣ ਹਾਰ, ਮੰਨੇ ਕਾ ਬਹਿ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰ, ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ, ਮੰਨੈ ਸੁਰਤ ਹੋਵੈ ਮਨ ਬੁੱਧ, ਮੰਨੈ ਸਗਲ ਭਵਨ ਕੀ ਸੁਧ,
मन्ना मुँह चोटा न खाए, मन्ना जम कै साथ न जाए। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। मन्ना मार्ग ठाक न पाए, मन्ना पत्स्यों प्रगट जाए। मन्ना मग न चले पंथ, मन्ना धर्म सेती संबंधु। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। मन्ना पावह मुख द्वार, मन्ना परवार साधार। मन्ने तरै तारी गुरसिख, मन्ने नानक भवै न भिखु। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। पंच प्रवान पंच प्रधान, पंचे पावह दर गहमान। पंचे सोहै दर राजान, पंचा का गुर एक ध्यान। जे को कह करे विचार, करते कह करने नाहीं सुमार। धौल धर्म दया का पूत, संतोखता बरख्या जिन सूत। जे को बुझै हुवै सचियार, तबले उपर किता भार। धरती होर परै होर होर, तिस्ते भार तलै कवन जोर। जी जात रंगा के नाव, सबना लिखिया बड़ी कलाम। एहो लिखा लिख जाने कोए, लिखा लिखिया किता होए। केता तान सुअलहो रूप, केती दात जाने कौन कूत। किता पसाओ एको कवाओ, तिस्ते होए लख दरियाओ। कुदरत कवन कहा विचार, वारिया ना जावा एक वार। जो तुद भावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख जप असंख भाओ, असंख पूजा असंख तप ताओ। असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रह उदास। असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार। असंख सूरमो पक्षार, असंख मोह लिवलाय तार। कुदरत कवन कहा विचार, वारिया ना जावा एक वार। जो तुद भावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख मूरख अंध घोर, असंख चोर हराम खोर। असंख अमर कर जाहे जोर, असंख अलवडात्या कमाहे। असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कूड़े आर कूड़े फिराहे। असंख मलेश मल पाक काहे, असंख निंदक सिर करह भार। नानक नीच कह विचार, वारिया ना जावा एक वार। जो तुद भावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो। असंख कह सिर भार हो, अखरी नाम अखरी सालाह। अखरी ज्ञान गीत गुण गाह, अखरी लिखण बोलन बाण। अखरा सिर संजोग बखान, जिन्हें लिखे तिस सिर नाए। जिव फरमाए तिव तिव पाए, जेता कीता तेता नाओ। विण नावै नाही को थाओ, कुदरत कवन कहा विचार। वारिया ना जावा एक वार, जो तुद भावै साई भली कार। तू सदा सलामत निरंकार, भरिए हथ पैर तंदेह। पानी धोतै उतरस के, मूत पलीती कपड़ होए। दे साबून लइए उह धोए, भरिए मत पापां कै संग। उह धोपै नावै कै रंग, उन्नी पापी आखण नाही। कर कर करना लिख लै जाहो, आपे बीज आपे ही खाहो। नानक हुक्मी आव हो जाहो, तीरथ तप दया दत दान। जे को पावै तिलका मान, सुनया मनया मन कीता भाओ। अंतरगा तीरथ मलनाओ, सब गुण तेरे मैं नाही कोए। बिन गुण कीते भगत न होए, स्वस्थ आथ बाणी बरमाओ। सत सुहान सदा मन चाओ, कवन सुवेला वक्त कवन। कवन थित कवन वार, कवन सिर उत्ती माहु कवन। जित हुआ आकार, वेल न पाईया पंडती। जी हुवै लेख पुराण, वक्त न पायो कादी। आजे लिखण लेख कुरान, थित वार न जोगी जाने। रुत माहु न कोई, जा करता सिर ठीको साजे। आपे जाने सोई, किव करे आखा किव सालाही। क्यों वरनी किव जाना, नानक आखन सब को आख। एक दो एक सियाणा, वड्डा साहिब वड्डी नाई। कीता जा का हुवै, नानक जी को आपौ जाने। अगै गया न सोहै, पाताला पाताल। लख आगासा आगासु, ओड़ कोड़ कपाल। थके वेद कह निकवात, सहस अठारह कैन कते बासलू। एक तात, लिखा हुए ता लिखी है, लिखा हुए विनाश। नानक वड्डा आखी है, आपे जाने आप। सालाही सालाही, ती सुरत न पाईया। नदियां तैवा पवह, समुंद न जानिय है। समुंद सहा सुल्तान, गिरहा सेती माल धन।
कीड़ी तुलना होवनी जे तिस मन हुना विस रहे अंत न सिफती कह न अंत अंत न करने दे न अंत अंत न वेखण सुनन न अंत अंत न जापै क्या मनमंत अंत न जापै कीता आकार अंत न जापै पारावार अंत कारण किते मिल लाहे ताके अंत न पाए जाहे इहो अंत न जाने कोई बहुता कही है बहुता हुए वड्डा साहिब ऊचा था ऊचे पर ऊचा नावे वड़ूचा हुए कोए तिस ऊचे को जाने सोए जीवड़ा आप जाने आप आप नानक नदरी करमी दात बहुता कर्म लिखिया न जाए वड्डा दाता तिल न थमाए किते मंगे जूद पार कित्या गणत नहीं विचार किते खप तुटह बेकार किते लै लै मुकर पाहे किते मूर्ख खाही खाहे कित्या दुख भूख सद मार ए पेदा तेरी दातार बंद कलासी भाणै होए हो राख न सकै कोए जे को खाए के आखण पाए ओ जाने जितिया मुँह खाए आपे जाने आपे दे कैसे पे के जिसनु बख्शे शिवसा लाहा नानक पातशाही पातशाह अमुल गुण मुल व्यापार मुल व्यापारी अमुल भंडार अमुल आवह मुल लै जाहे अमुल पाए अमुला सुमाहे अमुल धर्म मुल दीवान मुल तुल मुल परवान मुल बख्शीस अमुल निशान अमुल कर्म मुल फुरमान मुल मुला क्या न जाए आख आख रहे लिवलाए आख वेद पाठ पुराण आख पढ़े करे वख्यान आख बरमे आख इंद आख गोपी तै गोविंद आख ईसर आख सिद्ध आख गीते कीते बुद्ध आख दानव आख देव आख सुर नर मुंजन सेव कीते आख आखन पाहे किते कह कह उठ उठ जाहे ते किते होर करे ताक न सकै के जीवड़ भावै तेवड़ होए नानक जाने साचा सोए जे को आखै बोल विगाड़ तां लिखिए सिरगावा रंगावार सो दर केहा सो घर केहा जितवै सर्व संभाले वाजे नादन एक असंखा किते वावन हारे किते राग फरीशो कहीन किते गावन हारे गावै तोनू पौन पाणी बैसंतर गावै राजा धर्म दुआरे गावै चित गुप्त लिख जाने लिख लिख धर्म विचारे गावै ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सुवारे गावै इंद्रेंद आसन बैठे देवते अंदर नाले गावै सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे गावन जति सती संतोखी गावै वीर करारे गावन पंडित पढ़न रखीसर जुग जुग वेदा नाले गावह मोहनिया मन मोहन सुरगा मच प्याले गावन रतन पाए तेरे अड़सठ तीर्थ नाले गावह जोध महाबल सूरा गावह खानी चारे गावह खंड मंडल वर भंडा कर कर रखे तारे से तुदनु गावह जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले होर किते गावन से मैं चित नाव नन क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है पीवो सी जाए न जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर वेखै कीता अपना जिव तिस दी वडियाई जो तिस भावै सोई करसी हुक्म न करना जाई सो पातशाह साहा पात साहिब नानक रहन रजाई मुंदा संतोख शर्म पचोली ध्यान की करै बिभूत किंता काल कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीतै जगजीत आदेश सह आदेश आद नील अनाथ अनाथ जुग जुग एको वेश भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजह नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रित सितवरा साध संजोग जोग दुकार चलावह लिखे आवै भाग आदेश तिसै आदेश आद नील नाद नाथ जुग जुग एको वेश एका माई जुगत वे आई किंचेले परवानु एक संसारी एक भंडारी कलाए दीवानु जिव तिस भावै तिवै चलावै जिव होवै फुरमानु उह वेखै उना नदर न आवै बहुता इव विडानु आदेश तिसै आदेश आद नील नाथ अनाहत जुग जुग एको वेस आसन लोए लोए भंडार जुग छपाया सो एक वार कर कर वेखै सृजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस एक दूजी बहु लख हो हे लख हो वै लख वीस लख लख गेड़ा आखी है एक नाम जगदीश एतराहे पत पवनिया चढ़िया हुए अकीस
सुन गल्ला आकाश की आई रीस, नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़े ठीस। आखण जो छुपै नह जोर, जोर न मंगण दे न जोर, जोर न जीवन मरण जोर, जोर न राज माल मनसोर, जोर न सुरति ज्ञान विचार, जोर न जुक्ति छुट्टे संसार। जिस हर जोर कर वेखै सोए, नानक उत्तम नीच न कोए। राती रुती थिती वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती ताप रखी धर्मसाल। तिस विच जी जुगत के रंग, तिनके नाम नेक अनंत। करमी करमी हुए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार। तिथै सोहन पंच परवार, नदरी करम पवै निसान। कछ फकाई उथै पाए, नानक गया जापै जाए। धर्म खंड का इहो धर्म, ज्ञान खंड का आखो कर्म। केते पवन पाणी वै संतर, केते कान महेश। केते बरमे काढ़त घड़ी, यह रूप रंग के वेश। केतिया कर्म भूमि मेर, केते केते धूप देश। केते इंद चंद सूर, केते केते मंडल देश। केते सिद्ध बुद्धनाथ, केते केते देवी वेश। केते देव दान मन, केते केते रत्न समुंद। केतिया कहानी, केतिया बाणी, केते पात नरिंद। केतिया सुरती सेव, केते नानक अंत नांत। ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड, तिथै नाद विनोद कोड़ आनंद। शर्म खंड की बाणी रूप, तिथै काढ़त घड़ी है बहुत अनूप। ताकिया गल्ला कथिया न जाहे, जी को कह पिछे पछताए। तिथै घड़ी है सुरत मत मन बुद्ध, तिथै घड़ी है सुरा सिद्धां की शुद्ध। कर्म खंड की बाणी जोर, तिथै होर न कोई होर। तिथै जोत महाबल सूर, तिन मैं राम रहा भरपूर। तिथै सीतो सीता महिमा माहे, ताके रूप न कथने जाहे। ना हो मरे न ठागे जाहे, जिन कह राम वसै मन माहे। तिथै भगत वसै केलो, करे आनंद सच्चा मन सोए। सच खंड वसै निरंकार, कर कर वेखै नदर निहाल। तिथै खंड मंडल वर भंड, जे को कथै तंत अनंत। तिथै लो आकार, जिव जि हुकम तिवै तिवकार। वेखै विकसै कर विचार, नानक कथना करड़ा सार। जत पहारा धीरे सुनियार, अहरण मत वेद हथियार। भौख लागन तपताऊ, भांडा पाओ मृत ढाल। घड़िया शब्द सच्ची टकसाल, जिनको नदर कर्म तिनकार। नानक नदरी नदर निहाल, श्लोक पवन गुरु पाणी पिता। माता तरप मात, दिवस रात दुए दाई दाया। खेलै सबल जगत, चंगियाईयां बुरियाईयां। वाचै धर्म हदूर, करमी आपू अपनी के नेड़े के दूर। जिन नाम ते आया, गए मसक्कत काल। नानक ते मुख उजले, केती छुट्टी नाल। जिन नाम ते आया, गए मसक्कत काल। नानक ते मुख उजले, केती छुट्टी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जाप श्री मुखवाक पातशाही दसवीं, छपै चंत प्रसाद। चक्र चिहन अर वर्ण जात, अर पात नहन जेहे। रूप रंग अर रेख भेख, को कह न सकत केहे। अचल मूर्तन पव प्रकाशम, तुज कही जय। कोट इंद्र इंद्रान, साही साहान गनि जय। त्रिपवन महीप सुर नर सुर, नेत नेत बन त्रिन कहत। त्वै सर्व नाम कथै कवन, कर्म नाम वर्णत सुमत। भुजंग प्रिया छंद,

तेन मस्तंग अपातेन मस्तंग अमजबेन मस्तस्तजबे अदेशंग अदेशेन मस्तंग अपेशेन मस्तंग निर्तामेन मस्तंग निर्वामे नमो सर्वकाले नमो सर्वदयाले नमो सर्वरूपे नमो सर्वभूपे नमो सर्वकाप्ये नमो सर्वथाप्ये नमो सर्वकाले नमो सर्वपाले नमस्तस्त देवाय नमस्तंग अपेवाय नमस्तंग जन्मे नमस्तंग शुभनमे नमो सर्वगौणे नमो सर्वपौणे नमो सर्वरंगे नमो सर्वपंगे नमो कालकाले नमस्तदयाले नमस्तंगवर्णे नमस्तंगमरणे नमस्तं जरारं नमस्तं कृतारं नमो सर्वतन्दे नमो सत्तवन्दे नमस्तं निर्शाके नमस्तं निर्वाके नमस्तं रहिमे नमस्तं करिमे नमस्तं गणन्ते नमस्तं महन्ते नमस्तस्तरागे नमस्तं सुहागे नमो सर्वशोकं नमो सर्वपोकं नमो सर्वकर्ता नमो सर्वहर्ता नमो जोग जोगे नमो भोग भोगे नमो सर्वद्याले नमो सर्वपाले चाचरी चंत्व प्रसाद अरूप है अनूप है अजू है अपू है अलेख है अपेक है अनाम है अकाम है अदेह है अपेय है अजीत है अपीत है त्रिमान है निदान है त्रिवर्ग है असर्ग है अनिल है अनाद है अजेय है अजाद है अजन्म है अवर्ण है अपूत है अपर्ण है अगंज है अपांज है अचूज है।

हैं, महंत हैं, अलीक हैं, नरसिक हैं, निर्लंब हैं, असंभ हैं, अगम हैं, अजम हैं, अभूत हैं, अछूत हैं, अलोक हैं, अशोक हैं, अकर्म हैं, अपर्म हैं, अजीत हैं, अपीत हैं, अबा हैं, अगा हैं, अमान हैं, निदान हैं, अनेक हैं, फिरेक हैं, पुजंग प्रयाचंद, नमो सर्व माने समस्ति निदाने, नमो देव देवे अपेकी अपेवे, नमो काल काले, नमो सर्व पाले, नमो सर्व गौणे, नमो सर्व पौणे, अनंगी अनाथे निरसंगी परमाते, नमो पान पाने, नमो मान माने, नमो चंद्र चंद्रे, नमो पान पाने, नमो गीत गीते, नमो तान ताने, नमो नृत्य नृत्ये, नमो नाद नादे, नमो पान पाने, नमो बाद बाते, अनंगी अनामे समस्ति स्वरूपे, परपंगी परमाते समस्ति बेपूते, कलंकंग विनाने कलंकी स्वरूपे, नमो राज राजेश्वरं परम रूपे, नमो जोग जोगेश्वरं परम सिद्धे, नमो राज राजेश्वरं परम वृद्धे, नमो शस्त्रपाणे, नमो अस्त्रमाणे, नमो परम ज्ञाता, नमो लोकमाता, अपेक्षी अपरमी अपोगी अपुगते, नमो जोग जोगेश्वरं परम जुगते, नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे, नमो प्रेत अप्रे देवे सुधर्मे, नमो रोग हर्ता, नमो राग रूपे, नमो साह साहं, नमो पूप पूपे, नमो दान दाने, नमो मान माने, नमो रोग रोगे, नमस्तं इष्णानं, नमो मंत्र मंत्रं, नमो जंत्र जंत्रं, नमो इष्ट इष्टे, नमो तंत्र तंत्रं, सदा सच्चिदानंद सर्वं परनाशी, अनूपे अरूपे समस्तुल निवासी, सदा सिद्धदा बुद्धदा वृद्धकर्ता, अदो उर्द अर्धं अगंग ओग हर्ता,

त्रिपंगी अनंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे समस्तं प्रसिजे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं परनासी सदा सर्वदा रिद्ध सिद्धं निवासी चरपड़ चंत्व प्रसाद अमृत कर्मी अमृत तर्मे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मंग लख कर्मंग सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पानी सर्वंग मानी सर्वंग प्राणं सर्वंग त्राणं सर्वंग भूता सर्वंग

सर विश्व रच्यो सोयाम भव गण भंजन हार कालहीन कला संयुक्त काल पुरख देश धर्म धाम सु परम रहत भूत लख अपेश अंग राग न रंग जाके जात पात न नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुख दाए काम आप रूप अमीक अनुष्ठत एक पुरख अवतूत गर्भ गंजन सर्व भंजन आदि रूप सूत अंगहीन अभंग नात्मिक पुरख अपार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपार सर्व गंता सर्व हंता सर्व तेन भेख सर्व शास्त्र न जानही जे रूप रंग रेख परम वेद प्राण जक है नेत भगत नित कोट सिमृत प्राण शास्त्र नया वही व चित मद पार छंत्व प्रसाद गुणगन उदार महिमा अपार आसन अपंग उपमा अनंग अनुभव प्रकाश निस्तिन अनाश

अनुपूत अंग आवा अपंग गत मित अपार गुणगन उदार मुनगन प्रणाम निरपय निकाम अद्भुत प्रचंड मित गत अखंड आलिश्य कर्म आदृश्य धर्म सर्वा परनाढ्य अंडन बाढ़ चाचरी चंत्व प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियंग करियंग निर्नामे अकामे पुजंग प्रयाचंद चतुर चक्र कर्ता चतुर चक्र हर्ता चतुर चक्र दानी चतुर चक्र जानी चतुर चक्रवर्ती चतुर चक्र परती चतुर चक्र पाले चतुर चक्र काले चतुर चक्र पासे चतुर चक्र वासे चतुर चक्र माने चतुर चक्र दाने चाचरी चांदन सत्रह न मित्र न परमंग न पितर न कर्मंग न काय अजन्मंग अजाय न चित्र न मित्र परे है पवित्र प्रतिशय अधिशय अदृश्य अकृश्य भगवती चंत्व प्रसाद कथते के अचिज देशय के अभिज पेशय के अगंज कर्म के अभंज परमय के अभिज लोक के आदित्य सुख है के अवतूत वर्ण के विभूत कर्ण के राजंग प्रभा है के धर्मंग तुझा है के आशोक वर्ण के सर्वा अपर्ण के जगतंग कृति है के छत्रंग छत्री है के बर्मंग स्वरूप है के अनुभव अनुप है के आद अदेव है के आपु अपेव है के चित्रंग वहीन है के कै अधीन है के रोजी रजा कह रही मैं रेहा कै कि पाक बेअब है के गै बुल गैब है के अफुल गुना है के साहन साह है के कारण कुनिंद है के रोजी ध्यान है के राजक रहीम है के कर्मं करीम है के सर्वं कली है के सर्वं दली है के सर्वत्र मान्य है के सर्वत्र दान्य है के सर्वत्र गौण है के सर्वत्र पौण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र राज्य है के सर्वत्र साज है के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन है के सर्वत्र जाहु के सर्वत्र पाहु के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र भूख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र मान्य है सदैवं प्रधान्य है के सर्वत्र जाप्य है के सर्वत्र थाप्य है के सर्वत्र पान है के सर्वत्र मान्य है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है के सर्वं कलिम है के परमं फहीम है के आकल अलम है के साहिब कलाम है के हुस्नल वजू है तो मामूल रुजू है हमीसल सलाम है सलीकत मुदाम है।

हैं, भंग हैं, अजीजुल निवास हैं, गनी मुल्क राज हैं, निरुक्त स्वरूप हैं, त्रिमुक्त विभूत हैं, प्रभुक्त प्रभा हैं, सुयुक्त सुधा हैं, सदैवं स्वरूप हैं, अपेदी अनूप हैं, समस्तों पर राज हैं, सदा सर्वसाज है, समस्त

त्रिपंगी त्रिकामी त्रिभर्गं त्रिबाद्ये अगंजे अगाधे शुभं सर्वभागे सुसर्वा अनुराग त्रिपुगत स्वरूप है अचिज है अछूत है के नरकं प्रणास है प्रत्वल प्रवास है निरुक्त प्रभा है सदैवं सदा है विपुगत स्वरूप है परयुक्त अनूप है निरुक्त सदा है विपुगत प्रभा है।

अभय है, अभूत है, अतूत है, अनाश है, उदास है, अतंध है, अबंध है, अभक्त है, विरक्त है, अनाश है, प्रकाश है, निचिंत है, सुनित है, अलिख है, अधिक है, अलेख है, अपेख है, अटाह है, अगाह है, असंभ है, अगम है, अनिल है, अनाद है, अनित है, सुनित है, अजात है, अजाद है, चरपड़ चंत्व प्रसाद, सर्वंग हंता, सर्वंग गंता, सर्वंग ख्याता, सर्वंग ज्ञाता, सर्वंग हर्ता, सर्वंग कर्ता, सर्वं प्राणं, सर्वं त्राणं, सर्वं कर्मं, सर्वं धर्मं, सर्वं युक्ता, सर्वं मुक्ता, रसावल चंत्व प्रसाद, नमो नरक नासे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमातं परमाते सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे निरपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनुपे न पुत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न तात न मात न जात न पात निरसाकं सरीक है अमितो अमीक है सदैवं प्रभा है अजय है अजा है भगवती चंत्व प्रसाद के जाहर जहूर है के हाजर हजूर है हमेशल सलाम है समस्तुल कलाम है के

एक रहीम है। समस्तुल जुबा है के साहिब के राह के नरकं प्रनाश है, बहस्तुल निवास है के सर्वल गवान है, हम इसल रवान है, तमामुल तमीज है, समस्तुल अजीज है, परम परमीश है, समस्तुल अधीश है, अधिशल अलेख है, अमिशल अपेख है, जमीनुल जमा है, अमिकुल इमा है, करीमुल कमाल है के जुरत जमाल है, के अचलंग प्रकाश है, के मितो सुभाष है, के अजब स्वरूप है, के अमितो वैभूत है, के

अरबर अगंज हर नर पर पांज अनगन प्रणाम मुनमन सलाम हर नर अखंड बर नर अमंड अनपवनास मुनमन प्रकाश गुनगन प्रणाम जल थल मुदाम अंचिज अंग आसन अपंग उपमा अपार गतमित उदार जल थल अमंड दिस्विस अपंड जल थल महंत दिस्विस बेअंत अनपवना त्रेतर तुरास आजान बाहु इक्कै सदाहु ओंकाराद कथनीय नाद खलखंड खयाल गुरुबर अकाल कर कर प्रणाम चित चरण नाम अनछिज गात आजिज न बात अनछंज गात अनरंज बात अनटुट भंडार अनडट अपार आडीठ धर्म अतटीठ कर्म अनब्रन

करण है, सर्ववारण है, त्रित के करण है, जग के करण है, मन मान्य है, जग जान्य है, सर्वंग पर है, सर्वंकर है, सर्वपाश्य है, सर्वनाश्य है, करुणा कर है, विश्वंपर है, सर्वेश्वर है, जगतेश्वर है, ब्रह्मंडस है, कलखंडस है, परते पर है, करुणा कर है, जपा जप है, थपा थप है, अकृता कृत है, अमृता मृत है, अमृता मृत है, करुणा कृत है, कृता कृत है, धरणी तृत है, अमतेश्वर है, परमेश्वर है, अकृता कृत है, अमृता मृत है, जपा कृत है, अमृता मृत है, नर नायक है, कलकायक है, विश्वंपर है, करुणालय है, नृप नायक है, सर्पायक है, पावपंजन है, अर्गंजन है,

तेजे, नमो इंद्र इंद्रे, नमो अंधकारे, नमो तेज तेजे, नमो बृंद बृंदे, नमो बीज बीजे, नमो रासं तामसं शांत रूपे, नमो परम तत्तंग तत्तंग स्वरूपे, नमो जोग जोगे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो मंत्र मंत्रे, नमो ध्यान ध्याने, नमो युद्ध युद्धे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो पूज पूजे, नमो पान पाने, नमो कलह कर्ता, नमो शांत रूपे, नमो इंद्र इंद्रे अनादंग विभूते, कलंकार रूपे अलंकार लंके, नमो आसासे, नमो बांक बंके, अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे, त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे, कचरी छंद अजय अलय अपय अभय अपू अजू अनाश अकाश अगंज पंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम अकाम गाह अटाह अनाथ्य परमाथ्य अजूनी अमूनी नरागि नरंगे नरूपे नरेखे अकर्मंग परमंग गंजे अलेखे भुजंग प्रया छंद नमस्तुल प्रणामे समस्तुल प्रणासी अगंजुल नामे समस्तुल निवासी निरकामंग विपूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सुधर्मंग विपूते सदा सचदानंद सत्रंग प्रणासी करिमुल कुनिंदा समस्तुल निवासी अजाय विपूते गजाय गनिमे हरियंग करियंग करिमुल रहिमे चतर चक्रवर्ती चतर चक्र पुगते सोयं पल शुभंग सर्वदा सर्वजुगते।

सहाय, दुष्ट दोखते लेहो बचाई। कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता। किल विकसत देह को हरता, दुष्ट दोखिन को छय करता। श्री अस्तु जप भय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला। मन बांछत फल पावे सोई, दुख न तिसै व्यापत कोई अडिल। सुने गुंग जो याहे सुरस न पावई।

मैं हर हर खर्च लया बन पल्ले, मेरा प्राण सुखाई सदा नाल चले, गुर पूरे हर नाम दृढ़ाया हर ने

जीवाया। हों रह न सका बिन देखे प्रीतमा, मैं नीर वहे वह चल जियो, सतगुर मित्र मेरा बाल सखाई। हों रह न सका बिन देखे मेरी माई, हर जियो कृपा करहो गुर मिल हो, जन नानक हर धन पल जियो। माज महला चौथा, मधुसूदन मेरे मन तन प्राणा, हौ हर बिन दूजा अवर न जाना, कोई सज्जन संत मिले वडभागी, मैं हर प्रभ प्यारा दसै जियो। हौ मन तन खोजी भाल पालाई, क्यों प्यारा प्रीतम मिले मेरी माई, मिल सत संगत खोज दसाई, विच संगत

करहो प्रतपाला। मेरा मात पिता गुर सतगुर पूरा, गुर जल मिल कमल विकसै जियो। मैं बिन गुर देखे नींद न आवै, मेरे मन तन वेदन गुर बिरहो लगावै। हर हर दया करहो गुर मिलो, जन नानक गुर मिल रहस्य जियो। माज महला चौथा। हर गुण पढ़िए हर गुण गुणिए, हर हर नाम कथा नित सुनिए। मिल सत संगत हर गुण गाए,

नूर जग जीवन दाते, मिल हर दर्शन मन भीजै जियो, मिल सत संग बोली हर बाणी, हर हर कथा मेरा मन पाणी, हर हर अमृत हर मन भावै, मिल सतगुर अमृत पीजै जियो, वड भागी हर संगत पावै, भागहीन भ्रम चोटा खावै, बिन भागा सत संग ना लभै, बिन संगत मै

मन पाया, जन नानक नाम मन भीजै जियो। माज महला चौथा। हर गुर ज्ञान हर रस हर पाया, मन हर रंग राता हर रस पियाया। हर हर नाम मुख हर हर बोली, मन हर रस।

मल मल तुवा मिल हर जन हर रस पीचै जियो सतगुर दाता नाम दृढ़ाया वडभागी गुर दर्शन पाया अमृत रस सच अमृत बोली गुर पूरे अमृत लीचै जियो हर सत संगत सत पुरख मिलाई मिल सत संगत हर नाम ते आई नानक हर कथा सुनी मुख बोली।

हौ वारिया, मिल सत संगत लद्धा हर सज्जन, हौ सतगुर विटहो कुमाइया जियो, जह जह देखा तह तह स्वामी, तू कट कट रविया अंतर।

बिन दर्शन संत प्यारे जियो। हों कोली जियो कोल कमाई, गुर दर्शन संत प्यारे जियो रहाओ। तेरा मुख

पल छसा न विछुड़ा, जन नानक दास तुम्हारे जियो, हो को लीजियो कोल कुमाई, जन नानक दास तुम्हारे जियो रहाओ। राग माज महला पंजवा, सारुत सुहावी, जित

कोट जना जाके पूजह पैरा, गुरमुख हृदय जाके हर हर, सोई भगत एकाती जियो, अमोघ दर्शन बेअंत अपारा, वड समरथ सदा दातारा, गुरमुख नाम जपिए तित तरिए,

देहु प्यारे आए पया हर तीरे द्वारे दर्शन पेखत मन आघावे नानक मिलन सुपाई जियो माज महला पंजवां दुख तदे जा विसर जावे भुख व्यापे बहु विदतावे सिमरत नाम सदा सुहेला जिस देवै दीन दयाला जियो सतगुर मेरा वड समरथा जी संभाली ता सब दुख लथा चिंता रोग गई हौ पीड़ा आप करे प्रतपाला जियो बारिक वा

सतगुरु पूरे, जिन बंधन काटे सगले मेरे, हृदय नाम दे निर्मल किए, नानक रंग रसाला जियो, माज महला पंजवां। लाल गोपाल दयाल रंगीले, गहर गंभीर बेअंत गोविंदे, ऊंचा था बेअंत स्वामी, सिमर सिमर हौ जीवा जियो, दुख भंजन निधान अमूले, निर्भउ निर्वैर अथाह अतुले।

हर रंग गोपाला, ऊंच नीच करे प्रतपाला, नाम रसायन मन तृप्तायन, गुरमुख अमृत पीवा जियो, दुख सुख प्यारे तुद ते आई, एह सुमत गुरु ते पाई, नानक की धर तू है ठाकुर, हर रंग पार परिमा जियो, माज महला पंजवा, तन सो वेला जित मैं सतगुर मिलिया, सफल दर्शन नेत्र पेखत तरिया, सफल दर्शन नेत्र पेखत तरिया, तन मूरत चसे पल घड़िया।

तुम समरथ सदा सुख दाते, सब को तुम ही ते वरसावै, अवसर करहु हमारा पूरा जियो, दर्शन तेरे भवन पुनीता, आत्मगढ़ बिखम

मन पावे। तू संतन का संत तुम्हारे, संत साहिब मन माना जियो। तू संतन की करह प्रतपाला, संत खेल है तुम संग गोपाला। अपने संत तुद खरे प्यारे, तू संतन के प्राणा जियो। उन संतन कै मेरा मन कुर्बानी, जिन तू जाता सो तुद मन पानी। तिन कै संग सदा सुख पाया, हर रस

प्यासा तुमरी तुम ही संग मन लीना जियो। ज्यो बारिक पी खीर अगावे ज्यो निर्धन धन देख सुख पावे। त्रिखावंत जल पीवत ठंडा त्यों हर संग एहो मन पीना जियो। ज्यो अंधारै दीपक परगासा भरता चितवत पूरन आसा। मिल प्रीतम ज्यो होत आनंदा त्यों हर रंग मन रंगीना जियो। संतन मोकौ हर मार्ग पाया साध कृपाल हर संग गिजाया। हर हमरा हम हर के दासे नानक शब्द गुरु सच दीना जियो। माज महला पंजवा अमृत नाम सदा निर्मलिया। सुखदाई दुख बेडारन हरिया अवर साध चक सगले देखे।

तू गुप्त प्रगट प्रभ आपे, नानक दा सदा गुण गावे, एक पूरी नदर निहालिए जियो। माज महला पंजवां।

जी जंत सगले प्रतपारे मेहरवान किरपाल दयाला सगले तृप्त अघाय जियो वन त्रिन त्रिभवन की तो न हरिया करनहार।

भगत जीव है गुण गाए अपारा, गुण निदान अमृत हर नामा, हर त्याए त्याए सुख पाया जियो, मनसा तार जो करते आवे, साध संग जन्म मरण मिटावे, आस मनोरथ पूर्ण होवे, भेटत गुर दर्शाया जियो, अगम अगोचर किच मित नहीं जानी, साधक सिद्ध त्या वह ज्ञानी, खुदी मिटी चुका पुहलावा, गुर मन ही मह प्रगटाया जियो। आनंद मंगल कल्याण निदाना, सुख सहज हर नाम वखाना,

शीतल सांत सहज सुख पाया, ठाड पाई प्रभ आपे जियो, सब किछ बहुतो बहुत उपाया, कर कृपा प्रभ सगल रजाया। दात करो मेरे दातारा, जी जंत सब त्रापे जियो, सच्चा साहिब सच्ची नाई, गुर प्रसाद तिस सदा ध्याई।

सुनत गावत सुनत सबे ही मुक्ति सो त्याई जिन हम किए जियो जन्म जन्म के किल विख जाव है मन चिंदे सी फल पाव है सिमर साहिब सो सच स्वामी रिजक सब सकौ दिए जियो नाम जपत सर्ब सुख पाइये सब भौ बिनसै हर हर त्याइये जिन सेवया सो पार ग्रामी कारज सगले थिए जियो आए पया तेरी शरणाई ज्यों पावै त्यों लहे मिलाई।

0: कोई भी ऐसी जगह ब्रह्मंड विच नहीं है जिथे तुहाडी मौजूदगी ना होवे और जिथे तुहाडी मौजूदगी नहीं है वो जगह ही नहीं है। जाप साहब की बाणी कितने वड़े वड़े गुणा नू साडे सामने खोल के रख दी। तुसी परम रूप दे मालक हो, परम शक्तियां दे मालक हो, परम शक्तियां दे मालक हो। नमो जोग जोगेश्वरं परम सिद्ध। हुण जोगी ते कहंदे असी वड़े वड़े जोगी हैं, ते सतगुरु जी ने कहता तुसी कादे वड़े जोगी हो। गल नहीं जोग ना होई, जोग ना खिंता, जोग ना डंडे, जोग ना पसम चढ़ाइए, जोग ना बाहर मड़ी मसाणी, जोग ना ताड़ी लाइए, अंजन माहे निरंजन रही। उस निरंजन नु पाना है जेड़ा कालक तू रहत है, माया दे प्रभाव तो परे है। ते खालसा माया दे प्रभाव तो परे होके खालसा हो सकता। उदे कुल नवाबी आवे ठुकरा दिंदा है, वो दिल्ली दी तख्त ते 18 वारी कब्जा करके कब्जा छड़े आंदा। ते साडे वर्गे कई कहंदे ने चंगा कमाल दे बंदे कब्जा होया सी छड़ता। जिन्हां दे अंदर गुरबाणी वसी है, जिन्हां ने गुरबाणी जीवी है, जिन्हां ने गुरबाणी दे अनुसार उन्हां ताकतां नूं पाया है, वह गुरबाणी नूं समर्पित ने, क्योंकि उन्हां दे अंदर भरपूर तरीके नाल सतगुरु गुरु नानक साहब ने वसा दिता है। राज ना चाहूं मुकत ना चाहूं मन प्रीत चरण कमलारे ऐसा प्रीत, क्योंकि गुरु नानक आप निरंकार कलातार है। ये मैं नहीं कह रहा, भट्ट कह रहे, भट्ट साहबान तू पुछो, भाई गुरदास जी को पुछो, भाई लहड़ा जी को पुछो, बाबा अमरदास जी को पुछो, जिन्हों गुरु नानक सतगुरु ने सतगुरु बना दिया। मेरे सतगुरु जी प्रीतम जी गुरु नानक सतगुरु जी दसवें जामे विच मैं एक गल समझा रहे ने, तुसी दूसरे जोगिया के पिछे क्यों भजे फिर दे हो? क्यों नहीं उन्हां जोगियां दा मालक जिहड़ा सारी सृष्टि दा मालक है, इन्हां ते अपने कपड़े लाए ने, उन्हों ते कपड़े दी लोड़ ही नहीं है। इन्हां ते राख मल के अपने आप नूं प्रूफ करना है, उन्हों ते प्रूफ करन दी लोड़ नहीं, उन्हों राख मलन दी लोड़ नहीं। उह सिधियां सिधियां दा मालक है, और जिहड़ा उस नूं जपदा है रिदियां सिद्धियां पिछे ही रखता है, वह अगे नहीं करके रख लेता कि मनु मिल गया हुण इहदी वरतों करिए। बाणी जपी है धन मिल गया है, हुण इस राही किसे नूं नीवा दिखा दे। हर एक शय तों निर्लेप हुंदा जांदा है जद गुरबाणी विच गुरसिख का मन रचदा जला रंगिया जांदा है। ताही सतगुरु जी कहंदे ने जाको हर रंग लागो इस युग में, सो कहियत है सूरत। दुनिया के ताकतवर बड़े ओलंपिक विच फिरदे होणगे, कई राजे ताकतवर होणगे, लेकिन खालसे की ताकत जिहड़ा भी देखता है वह खुंडियां कृपाना भी तोपां नूं मूंह मोड़ दिंदे। तोपां दे चक्के टुट जाण ते अपना मोढ़ा ला के तोपां भी चला देंदे। सोचण वाली गल है कि ऐसी दुनिया दे विच किहड़ी शै गुरु नानक ने तैयार कर दिती जिहड़ी बाणी दे राही उस दे अंदर भरपूर मात्रा विच जीवन जीण दी भी आस बन गई ते जीवन निछावर करन दी भी आस बन गई, जीवन दा आनंद लैण दी भी आस बन गई ते जीवन नूं कुर्बान करने की भी आस। नमो राज राजेश्वरं परम वृद्ध। राजा का राजा क्योंकि परम रूप है, तो तेरे वर्गा संसार विच कोई जोगी नहीं, तेरे वर्गा कोई राजा नहीं, तेरे वर्गा कोई प्रकम प्रचंड विद्वान नहीं, ते तेरे वर्गा वृद्धे का मतलब है कि तेरे वर्गा कोई प्रकर्मी हाकम नहीं, बड़ा हाकम नहीं, दुनिया का हाकम ते किसे नू दे के ले लेंदा, दुनिया के राजे टैक्स लेके लेके किसे नू कुछ दे दे, लेकिन तू किसे को लेके किसे नू नहीं देंदा, सब नू देंदा है, किसे तू लेंदा नहीं, किसे नू मोड़वा ही नहीं कहता मैं तेनू दिता ते तेरे उत्तर लेना। इथे ते धी जे मां नू देवे, मां सब कुछ दे देवे, धी मां नू देवे ते मंगदी वापस दे मां, प्यो सब कुछ पुत्र नू दे देवे लेकिन पुत्र कहंदा लिया बापू मैं तेनू पैसे दिते ही तेनू क्यों दिया। संसार दी सोच नू छड़ के जद निरंकार दे सफर नू तुरदे हां ते सानू अपना आप होमे नू गुवाणी पैंदी, अपने अंदरों होमे मारनी पैंदी है। अगली विचार कल दे दिन करांगे। सत्कारयोग भाई साहब कीर्तनी जत्था आ चुका है, बाणी पढ़दे हां, विचार पेश करदे हां, नेकां भुलां होंगियां होंगियां, अनजान जाण के क्षमा करनी, अरदास करनी। सतगुरु जी जिन्हें भी बचन विचार संगतां नाल करदे हां अपने जीवन विच टालण दा बल बरस, भुलां नूं बख्श के फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा,
1: खालसा
0: वाहिगुरु जी
1: फतेह।

0: सतगुरु जी दी पावन पवित्र तनगी गोद विच जुड़ बैठी गुरु प्रसाद संगत जीओ प्यार सहित असीस बख्शिश करदे हां, एकाग्रता बख्शिश करदे हां, गुरु दी बख्शिश गुरु फतेह प्रवान करनी जी। वाहिगुरु जी का खालसा,
1: वाहिगुरु जी की फतेह।
0: हर कीर्तन सुने हर कीर्तन गावे, तिस जन दुख लिख नहीं आवे। आओ उस महान बख्शिश जिहड़ी सानूं कीर्तन दे रूप मालिक ने बख्शिश कीती है प्राप्त करन लई, उस रस नूं माणन दे लई जिहड़ा रस तुसीं रोजाना ही अपने उस पावन स्थान सचखंड श्री हरिमंदर साहिब श्री दरबार साहिब तो दूर बैठे टीवी राही श्रवण करते हो, कि यूं महसूस करते हो कि असी धन गुरु रामदास पिता की गोद श्री दरबार साहिब विखे बैठे हुए हैं। ਉਸੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੁੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰਲ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਸਨਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਲਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪ ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਪਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਰਸਨਾ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣ। कुछ मिनटा लिए और रल के वाहगुरु का सिमरन करिए, उस तो उपरंत आपकी शब्द श्रवण करोगे। तू समरथ वड्डा मेरी मत थोरी राम।

चौकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी। सिखां दा मन नीवा मत उची मत पत दे रखे आप वाहिगुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सहाई दतार जीओ श्री ननकाणा साहिब अते होर गुरुद्वारे गुरुधाम जिन्हां नूं पंथ तो विछोड़िया गया है। खुले दर्शन दीदार सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शिश करो। हे निमाणिया दे मान नितानिया दे तान नियोटिया दी ओट गुरु गरीब नवाज दसों पातशाह की आत्मक जोत शब्द गुरु धन धन धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी आप जी का पावन पवित्र फरमान है। लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुरु नदर करे निमक एक हर नाम दे मेरा मन तन शीतल होए दे मां वाक अनुसार। गरीब नवाज सतगुरु जी आप जी ने आज अपार बख्शिश रहमत कीती आप जी के हजूर सुभाग जोड़ी काका अजीत पाल सिंह धालीवाल पुत्र सरदार गुरदीप सिंह बीबी वरिंदर कौर बच्ची सुप्रीत कौर धालीवाल सुपुत्री सरदार मनप्रीत सिंह बीबी सरबजीत कौर सच्चे पातशाह इस सुभाग जोड़ी दे आप जी के हजूर गुर मर्यादा अनुसार आनंद कार्ज हुए। गरीब नवाज आप जी के पावन पवित्र दरबार अंदर विचरदियां आप जी की पावन पवित्र हजूरी विच सेवावां निभाउंदियां बेअंत बेअंत भुल्लां होईयां आप जी ने बख्शदे नहीं आगे तो सावधानता बख्शिश करके नवाजना रहमत करनी सुभाग जोड़ी दे सिर ते मेहर भरिया हथ रखना ग्रिस्त धर्म दियां सारियां खुशियां झोली विच पाउणियां ग्रिस्त धर्म दियां जिम्मेवारियां निभाउण वास्ते सच्चे पातशाह जी आप जी ने रहमत करनी मार्ग दर्शन सदा करदे रहना रहमतां करनियां दोहां परिवारां विच सुभाग जोड़ी विच आपसी प्रेम प्यार इतफाक दी दात बख्शिश करके नवाजना। इस वक्त गरीब नवाज सुभाग जोड़ी वल्लों आप जी नूं सुंदर पोशाके पहनाए गए हन आप जी ने अंगीकार किते हन सदीव काल लोक परलोक पड़दे कजने बख्शिश किते भंडारियां विचों कड़ा प्रसादी देग हाजर है दर प्रवान होवे प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरचे सतगुरु जी बेअंत संगता ने आप जी के पावन दर कर दियां हाजरियां भरियां पेटावां माया आप जी ते चरणा विच अर्पण कीती कृपा करनी दर आईयां समूह संगतां दियां हाजरियां पेटावां दर प्रवान करनियां सबना नूं दरों करो नामदान गुरसिखी जीवन चढ़दी कला बख्शिश करके नवाजना सबना दियां अरदासां बेनतियां अपने दर ते प्रवान कर लेनियां। गुरु गरीब नवाज इस वक्त आप जी कृपा करो दर आईयां समूह संगतां नूं निवाजदे होए पावन पवित्र हुक्म बख्शो जी हुक्म ते चलण दी मत बुद्ध प्रदान करो अखरवाद घाट भुल चुक मुआफ करनी सरबत दे कार्ज रास करने सही प्यारे मेल जिन्हां मिले आप जी का नाम चेतावै नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाण

सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम भगत जनक मन विश्राम रहाओ। प्रभ का सिमरन गर्भ नवस प्रभ का सिमरन दुख दमनस प्रभ का सिमरन काल पर हर प्रभ का सिमरन दुश्मन टर प्रभ सिमरत कश विघ्न न लग प्रभ का सिमरन अनदिन जग प्रभ का सिमरन भौ न व्याप प्रभ का सिमरन दुख न संताप प्रभ का सिमरन साधक संग सर्व निदान नानक हर रंग प्रभ का सिमरन दिद सिद्ध नौ निद प्रभ का सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध प्रभ का सिमरन जप तप पूजा प्रभ का सिमरन विनसै दूजा प्रभ का सिमरन तीर्थ स्नानी प्रभ का सिमरन दरगह मानी प्रभ का सिमरन होय सुफल प्रभ का सिमरन सुफल फला से सिमर जिनाप सिमराय नानक ता कै लागो पाए प्रभ का सिमरन सब ते उचा प्रभ का सिमरन उदरे मोचा प्रभ का सिमरन तृष्णा पूज प्रभ का सिमरन सब किज सूज प्रभ का सिमरन नाही तम त्रासा प्रभ का सिमरन पूर्ण आशा प्रभ का सिमरन मन की मल जाए अमृत नामृत माहि समाए प्रभ दिवस सादगी रसना नानक जन का दासन दसना प्रभ को सिमर से तनवंते प्रभ को सिमर से पतवंते प्रभ को सिमर से जन प्रवान प्रभ को सिमर से पुरुख प्रदान प्रभ को सिमर से बेमोहता दे प्रभ को सिमर से सर्व के राजे प्रभ को सिमर से सुखवासी प्रभ को सिमर सदा विनाशी सिमरन ते लागे जिनाप दयाल नानक जन की मंगर वाला प्रभ को सिमर से पर उपकारी प्रभ को सिमर तिन सद बलिहारे प्रभ को सिमर से मुख सुहावे प्रभ को सिमर तिन सुख विहाव प्रभ को सिमर तिन आत्म दीता प्रभ को सिमर तिन निर्मल दीता।

सहज समाने प्रभ का सिमरन ने चलासन, प्रभ का सिमरन कमल बिगासन, प्रभ का सिमरन अनहद चुनकार, सुख प्रभ सिमरन का अंत न पार। सिमर से दन जिनको प्रभ मया, नानक तिन जन

मन तन रंग रति रंग एक नानक जन के बिरत विवेक हर का नाम जन को मुक्त जुगत हर का नाम जन को त्रिपत भुगत।

हर हर जन कै मालक दीना, हर तन जन को आप प्रभ दीना। हर हर जन कै ओट सतानी, हर प्रताप जन अवर न जानी। ओत पोत जन हर रसदाते, सुन सुमाद नाम रसमाते। आठ पहर जन हर हर जप, हर का भगत प्रगट नहीं सप।

में अपने गत मित जानो आपे आपन संग आप प्रवराते तुमरी उस्तत तुम ते होए नानक अवद न जान सकोए सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म सगल क्रिया में उत्तम क्रिया साध संग दुर्मत मल हिरिया।

दृढ़ कर माने मन है प्रतीत काल न वे मूढ़े चित बैर विरोध काम क्रोध मोह टूट विकार महा लोभ त्रोह।

अष्टपदी दस वस्तु ले पाठ पावे, एक वस्त कान बिखोट गवावे, एक पी न दे दस पीहिर ले, तो मुड़ा को कहा करे। जिष्ठा कृष्ण नाही चारा, ताको कीते सद नमस्कार। जाके मन लागा प्रभ मीठा, सर्व शोकता हो मन बूठा। जिस जन अपना

रहत अवर कशवर कमावत मन ने प्रीत मुखो गुण लावत जान नहार प्रभु परवीन बाहर बेख न कहो पीन अवर उपदेश आप न कर।

हर जस कहत। देह प्रसाद तेरे सकल सिद्र ठाके, मन सरने पर ठाकर प्रभु ताके। देह प्रसाद तुझको न पहुंचे, मन सास सास सिमरो प्रभु जी। देह प्रसाद पाई दुर्लभ दे, नानक ताके भगत करे। देह प्रसाद भूखन पहरी जय, मन ते सिमरत क्यों आलस की जय। देह प्रसाद अश्व हस्त सवारी, मन तिस प्रभु को कब हो न बिसारी। देह प्रसाद भाग मिलख तना, राख पुरे प्रभु अपने मन। जिन तेरी मनवंत बनाए, उठत बैठत सत दिशा ते आई। दिशा ते आई जो एक अलख है, इहा उहा नानक तेरी रख है।

प्रसाद निपतन है, गुरु प्रसाद नानक दशक है। जेह प्रसाद सुने करन नाद, जेह प्रसाद पिखे विस्माद, जेह प्रसाद बोले अमृत रसना, जेह प्रसाद सुख सहज वसना, जेह प्रसाद हस कर चले, जेह

ब्रह्मज्ञानी के घर सदा आनंद। ब्रह्मज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्मज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म का बेटा, ब्रह्मज्ञानी एक संहेता। ब्रह्मज्ञानी कह होए अचिंत, ब्रह्मज्ञानी का निर्मल मंत। ब्रह्मज्ञानी जिस करे प्रभ आप, ब्रह्मज्ञानी का बड़ प्रताप। ब्रह्मज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाइये, ब्रह्मज्ञानी का बल बल जाइये। ब्रह्मज्ञानी का खोज महेश्वर, नानक ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्मज्ञानी की कीमत नाहे, ब्रह्मज्ञानी का सगल मन माहे। ब्रह्मज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्मज्ञानी का सदा आदेश। ब्रह्मज्ञानी का कथिया न जायद आखिर, ब्रह्मज्ञानी सर्व का ठाकुर। ब्रह्मज्ञानी की मित कौन बखाने, ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जाने। ब्रह्मज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्मज्ञानी का सदा नमस्कार। ब्रह्मज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता, ब्रह्मज्ञानी साध जीवे नहीं मरता। ब्रह्मज्ञानी मुक्त जुगत जीव का दाता, ब्रह्मज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता। ब्रह्मज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्मज्ञानी का सब ऊपर हाथ। ब्रह्मज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्मज्ञानी आप निरंकार। ब्रह्मज्ञानी की शोभा ब्रह्मज्ञानी बनी, नानक ब्रह्मज्ञानी।

नानको हुआ परस सगल निस्तार अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस मन में प्रीत रंजन निरंजन दर्श पर त्रै रूप न पेख नेत्र सादगी।

तरह इंद्री जित पंच दोखते रहत नानक कोट म देखो ऐसा परस बैसन सो जिस ऊपर सो प्रसन्न बिसन की माया ते होए भिन्न कर्म करत हो वह नहीं कर्म तिस बैसनो का निर्मल धर्म काहू फल की इच्छा नहीं बादशाह केवल भगत कीर्तन संगराचाय मन तन अंतर सिमरन गोपाल सब ऊपर होवत कृपाल आप दृढ़ वह नाम जपावै नानक हो बैसनो परम गत पावै भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्याग दुष्ट का संग मन ते बिनसै सगला परम कर पूजै सगल पार ब्रह्म साध संग पापा मलक होवै तिस भगवती की मत उत्तम होवै भगवंत की टहल करै नित नीत मन तन अर्पै बिसन प्रीत हर के चरण हृदय बसावै नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावै सो पंडित जो मन पर बोधै राम नाम आत्म है सोधै राम नाम सार रस पीवै उस पंडित कै उपदेश जग जीवै हर की कथा हृदय बसावै सो पंडित फिर जोर न आवै वेद पुराण सिमरत बूझै मूल सूखम मह जानै स्थूल चौह वर्णा को दे उपदेश नानक उस पंडित को सदा आदेश बीज मंत्र सर्व को ज्ञान चौह वर्णा मह जपै को नाम जो जो जपै तिसकी गत होए साध संग पावै जन कोए कर कृपा अंतर उर तारै पस प्रेत मुक्त पात्र को तारै सर्व रोग का औखद नाम कल्याण रूप मंगल गुण गाम काहू जुगत कितै न पाई है धर्म नानक तिस मिलै जिस लिखिया तुर कर्म जिसका मन पार ब्रह्म का निवास तिसका नाम सत रामदास आत्म राम तिसन दरी आया दास दसन तन पाए तन पाया सदा निकट निकट हर जान सुरदास दरगह प्रवान अपने दास को आप कृपा करै तिस दास को सब सोजी परै सगल संग आत्म उदास ऐसी जुगत नानक रामदास प्रभ की आज्ञा आत्म हितावै जीवन मुक्त सोव कहावै तैसा हरक तैसा उस सोग सदा आनंद तह नहीं वियोग तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी तैसा अमृत तैसी बिखाटी तैसा मान तैसा अभिमान तैसा रंग तैसा राजान जो वरताए साई जुगत नानक हो पुरख कही है जीवन मुक्त पार ब्रह्म के सगले ठाओ जित जित घर राखै तैसा तिन नाओ आपे करण करावन जोग प्रभ भावै सोई फन होग पसरियो आप होए अनंत तरंग लखे न जाहे पार ब्रह्म के रंग जैसी मत दे।

जिसके अंतर राज अभिमान सो नरकपाती होवत सुवान जो जान मैं जोबनवंत सो होवत बिष्टा का जंत आपस कौ कर्म मंत कहावे जन्म मरै भौ जौन परमावे धन भूम का जो करै गुमान सो मूर्खंदा ज्ञान कर कृपा जिसकै हृदय गरीबी बसावै नानक इहां मुक्ति आगै सुख पावै तनवंता होए कर गर्भावै तृण समान काश संग न जावै बहु लश्कर मानक ऊपर करे आस पल भीतर ताका होए बिरास सबते आप जानै बलवंत खिनमह होए जाए बसमंत किसे न बदै आप अहंकारी धर्म राय तिस करे खुआरी गुरप्रसाद जाका मिटे अभिमान सो जन नानक दरगह प्रवान कोट कर्म करै हो धारे श्रम पावै सगले बिरथारे अनक तपस्या करे अहंकार नरक सुर्ग फिर फिरे अवतार अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवै हर दरगह कहो कैसे गवै आपस कौ जो भला कहा वै तिसे भलाई निकट नया वै सर्व कीरे जाका मन होए कहो नानक ताकि निर्मल सोए जब लग जाने मुझते कश होए तब इस कौ सुख नाही कोए जब हे जाने मैं किस करता तब लग गर्भ जोन मैं फिरता जब तारै को बैरी मीत तब लग नहीं चलना ही चीत जब लग मोह मगन संगमाए तब लग धर्म राय देश जाए प्रभु कृपा ते बंधन टूटे गुर प्रसाद नानक कहाँ छूटे सहस खटे लख का उठता वै तृप्त न आवै माया पाछै पावै अनेक भोग बिख्या के करै नह तृप्ता वै खप खप मरै बिना संतोख नहीं को राजै सुपन मनोरथ बिरथे सबका जय नाम रंग सर्व सुख होए बटभागी किसै प्राप्त होए करण करावन आपे आप सदा सदा नानक हर जाप करण करावन करण हार इसके हाथ कहाँ विचार जैसे दृष्ट करे तैसा होए आपे आप या प्रभ सोए जो किसकी नो सो अपने रंग सबते दूर सबों के संग बुझे देखे करे विवेक आप एक आप अनेक मरे न बिनसे आवे न जाए नानक सद ही रहे समाये आप उपदेश समझे आप आपे रचिया सबके साथ आप किनो अपन विस्तार सब का

एक आस हर मन रखो हो नानक दुख भरम पाओ जाए अष्टपदी। मानो की टेक बृथि सब जान देवन को एक भगवान जिसके दिया रहे अगाए बहुर न तसना लागे आए मारे रख है को आप मानुक कह किसना ही हाथ तिसका हुकम बूझ सुख होए तिसका नाम रख कंठ परोए सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए नानक बिघन न लागे कोए उसत मन में कर निरंकार कर मन मेरे सत व्यवहार निर्मल रसना अमृत पियो सदा सुहेला कर लह जियो। नैनो पेक ठाकुर का रंग साध संग बिन सह सब संग चरण चलो मार्ग गोबिंद मिटह पाप जपिए हर बिंद कर हर कर्म श्रवण हर कथा हर दरगह नानक उजल मथा बड़पागी ते जन जगमाहे सदा सदा हर के गुण गाहे। राम नाम जो करह विचार से तनवंत गनी संसार मन तन मुख बोले हर मुखी सदा सदा जानो ते सुखी। एको एक एक पछानै इतोत की ओ सो जी जानै नाम संग जिसका मन मानिया नानक तिनह निरंजन जानिया। गुर प्रसाद अपने आप सुजै तिसकी जानो तृष्णा बुझै साध संग हर हर जस कहत सर्व रोग ते ओ हर जन रहत। आनंदन कीर्तन केवल बखियान ग्रस्त मह सोई निर्बान एक ऊपर जिस जन की आसा तिसकी कटिया जम की फासा। पार ब्रह्म की जिस मन भूख नानक तिसे न लागे दुख जिसको हर प्रभ मन च आवे सो संत सुहेला नहीं डुलावे। जिस प्रभ अपना कृपा करे सो सेवको किसते डरे जैसा साथ ऐसा दृष्टाया अपने कार्य में आप समाया। सोदत सोदत सोदत सीजिया गुर प्रसाद तत सब बुझिया जब देखो तब सब किश मूल नानक सो सूखम सोई स्थूल। नह किस जन्मे नह किस मरे अपन चलते आप ही करे आवन जावन दृष्ट अन दृष्ट आज्ञा कारी तारी सब श्रेष्ठ। आपे आप सकल मह आप अनक जुगत रच थाप उथाप अविनाशी नाही किस खंड धारण तार रहे हो ब्रह्मांड। अलख अपेव पुरख प्रताप आप जपायता नानक जाप जिन प्रभ जाता सो सो बावंत सगल संसार उदरै तनमंत। प्रभ के सेवक सगले उदारन प्रभ के सेवक दुख बिसारन आपे मेल लय कृपाल गुरु का शब्द जप पय निहाल। उनकी सेवा सोई लागे जिसनों कृपा करह बड़ पागे नाम जपत पाव है विश्राम नानक तिन पुरख का उत्तम करमान। जो किश करे सुप्रभ के रंग सदा सदा बसै हर संग सहज सुपाए हुए सो होए करणे हार पछाणे सोए। प्रभ का किया जन मीठ लगाना जैसा साथ है सा दृष्टाना जिसते उपजे तस्माए समाए ओए सुख निदान उन्हू बने आए। आप सकाओ आप दीनो मान नानक प्रभ।

अष्टपदी टूटी गांड नहार गोपाल सर्व जिया पे व्रत पाल सगल की चिंता जिस मन माहे तिस्ते व्रता कोई नाहे रे मन मेरे सदा हर जाप अविनाशी प्रभ आपे आप आपन किया कछु न होए जे सौ प्राणी लोचा कोए तिस बिन नाही तेरे किस काम गत नानक जप एक हर नाम रूपवंत होए नाही मोह प्रभ की जोत सगल घट सो है तनवंता होए क्या को गर्भ है जा सब किस तिसका दिया दरब है आत सूरा जे को कहा वह प्रभ की कला बिना कहता वह जे को होए बह दातार तिस देन हर जाने गावार जिस गुर प्रसाद।

संग मिल जोत प्रगटावे, तिन संतन की बाशा तूर, नानक की हर लोचा पूर। मन मूरख काहे बिरलाई है, पूर्व लिखी का लिखिया पाई है, दुख सुख प्रभ देवन हार, अवर त्याग तू तिसे चितार। जो कछ करे सोई सुख मान, भूला काहे फिर है जान, कौन बस के आई तेरा संग, लपट रहे और असलो भी पतंग। राम नाम जब हृदय माहे, नानक पद सेती कर जाहे, जिस वखर कौ लैन तू आया, राम नाम संतन घर पाया। ताजा विमान लेहो मन मोल, राम नाम हृदय में तोल, लाद खेप संत संचाल, अवर त्याग बिख्या जंजाल। तन तन कह सब कोय, मुख उजल हर दर गह सोए, एह वापार विरला वापार है, नानक ता कह सद बलिहार है। चरण साध के तोए तोए पियो, अरप साध को अपना जियो, साध की तूर करो स्नान, साध यो प्रजाइये कुर्बान, साध सेवा वटपागी पाई है, साध संग हर कीर्तन गाई है। अनेक बिघन ते साधु राख है, हर गुण गाये अमर तरस चाख है, ओट गही संत है दरियाया, सर्व सुख नानक ते पाया। मृतक कौ जीवालन हार, भूखे कौ देवत आधार, सर्व निदान जाकी दृष्टि माहे, पूर्व लिखे का लहना पाहे। सब किस तिसका हो करण जोग, तिस बिन दूसर हुआ न होग, जब जन सदा सदा दिन रहनी, सब ते उच निर्मले करणी। कर कृपा जिसको नाम दिया, नानक सोजन निर्मल थिया, जाके मन गुर की प्रतीत, तिस जन आवे हर प्रभ चीत, भगत भगत सुनिया ते होलोए, जाके हृदय को होए। सच करनी सचता की रहत, सच हृदय सत मुख कहत, साची दृष्ट साचा आकार, सच वरत साचा पासार, पार ब्रह्म जिन

हरण परण जाका नेत्र फोर, तिसका मंत्र न जाने होर। अनद रूप मंगल सद जाके, सर्व थोक सुनिए करता कै। राज महराज जोग मह जोगी, ताप मह तपिसर ग्रस्त मह भोगी। त्याए त्याए भगत है सुख पाया, नानक तिस पुरख काकने अंत न पाया। जाकी लीला की मित नाहे, सगल देव हारे अवगाहे। पिता का जन्म के जाने पूत, सगल पुरोई अपने सूत। सुमत ज्ञान ध्यान जन दे, जनदास नाम ते आवै से। तेहो गुण मह जा को परमाए, जन्म रह फिर आवै जाए। ऊच नीच तिसके स्थान, जैसा जनावै तैसा नानक जान। नाना रूप नाना जाके रंग, नाना पेख करह एक रंग। नाना बिद की नो विस्थार, प्रभ अविनाशी एकंकार। नाना चलत करे खन माहे, पूर रहे पूरण सब ठाए। नाना बिद कर बनत बनाई, अपनी कीमत आपे पाई। सब कट तिसके सब तिसके ठाओ, जब जब जी वह नानक हर नाओ। नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मांड। नाम के तारे सिमृत वेद प्राण, नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान। नाम के तारे आकाश पाताल, नाम के तारे सगले आकार। नाम के तारे प्रिया सब भवन, नाम के संग उदरे सुन श्रवन। कर कृपा जिसे अपने नाम लाए, नानक चौथे पद में सो जनगत पाए। रूप सत जाका सत स्थान, पुरुष सत केवल प्रधान। करतूत सत सत जाकी वाणी, सत पुरुख सब माह समाणी। सत कर्म जाकी रचना सत, मूल सत सत उत्पत। सतकरणी निर्मल निर्मली, जिसे बुझाए तिसे सब भली। सत नाम प्रभु का सुखदाय, विश्वास सत नानक गुरते पाई।